0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का गोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत। आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहां ट्राइबल 25,000 या 30,000 बच्चों को ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

0: के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिव कुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the lost home and the lost village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटी जी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के रहते हैं। उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
1: वेस्ट बंगाल्स फॉर्मर रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस इज इन टर्मोइल एंड ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट। एक्सपेल्ड टीएमसी एमएलए ऋतुबर्ता बनर्जी claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift control of the assembly. His faction has already written to Speaker Rathindra Bose asking to be recognized as the real TMC. In a counter move, TMC announced Shobhanand Deb Chattopadhyay as the leader of the house, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said that nearly 40,000 students have successfully submitted their re-evaluation applications and completed the application process without facing any issues. CBSE had yesterday opened the online portal for verification of issues observed in scanned copies of answer books and re-evaluation of answers for Class 12 students. The facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. India has surpassed the United States in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of the new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru. Union

Standard. नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है विश्व साइकिल दिवस। यह हर साल 3 जून को मनाया जाता है। ये साइकिल के अनूठे लंबे समय तक चलने वाले बहुमुखी उपयोग को उजागर करता है। साइकिल चलाना सेहत के लिहाज से तो फायदेमंद है ही, इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है और मेंटल हेल्थ भी मजबूत होती है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये बहुत जरूरी है और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। साइकिल के हर पैडल के साथ एक नया सफर शुरू होता है जो हमें सिखलाता है जीवन भर स्वस्थ रहना और पर्यावरण को सुरक्षित करना। अब सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, जहां पर्दे पर नूतन अपनी सहेलियों के साथ साइकिल चलाती नजर आ रही हैं।

खूबसूरत नगमे हम ले आते हैं आपके लिए, और ये हमारा थोड़ा छोटा सफर नहीं है, ये हमारा 90 सालों का सफर है आपके साथ। रेडियो आपके हर पल में आपके साथ है। जी हाँ, आकाशवाणी आपका 90 सालों से हम सफर रहा है, और आज हम आपको बताएंगे कि आकाशवाणी में फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। 10 जनवरी 1993 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहली बार फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जी हाँ, दशकों से चली आ रही एक तरफा प्रसारण व्यवस्था को बदलते हुए श्रोताओं को केवल एक निष्क्रिय सुनने वाला नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें प्रसारण का एक जीवंत हिस्सा बनने का अवसर मिला। इससे पहले खत भेजे जाते थे, खत आकाशवाणी पहुंचते थे, श्रोताओं की पसंद के गीत बजाए जाते थे, श्रोताओं की पसंद सुनी जाती थी। जी हाँ, लेकिन वो तब उनका संवाद नहीं होता था। संवाद शुरू हुआ फोन इन कार्यक्रम से। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तकनीक, शिक्षा, सरकारी नीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर श्रोता सीधे सवाल पूछने लगे, जिससे सूचना का आदान प्रदान हुआ और भी सटीक हो गया। ये सेवा विशेष रूप से इंटरैक्टिव और युवा केंद्रित प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस कदम ने रेडियो को अधिक पारदर्शी, संवादात्मक और सहभागी माध्यम में बदल दिया, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें और जान सकें कि आपके मन में क्या है। और यही वादा हम हमेशा से करते आए हैं, आकाशवाणी 90 सालों से आपके साथ।

0: महल फिल्म की ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के जुगल स्वरों में।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू के खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर संजय सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर लोगों तक यह संदेश पहुंचाना बेहद जरूरी है कि तंबाकू केवल आदत नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है।
1: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों मनाया जाता है।
2: वर्ल्ड नो टोबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित भी करता है। इस बार की थीम है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटिन एंड टोबैको एडिक्शन।
1: तंबाकू किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है?
2: तंबाकू विभिन्न रूपों में यूज किया जाता है, जैसे कि तंबाकू को सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखे के रूप में, खैनी, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट जैसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें मौजूद जो निकोटिन व्यक्ति को लटका शिकार बना देता है।
1: तंबाकू से शरीर को किस तरह का नुकसान होता है?
2: तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। इससे मुंह और गले और फेफड़ों का कैंसर होता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, सांस की बीमारियां होती हैं, दांत और मसूड़ों की समस्याएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर होता है। ये सभी तंबाकू के गंभीर दुष्प्रभाव हैं।
1: क्योंकि मैंने सुना था, पहले कहते थे तंबाकू से कैंसर हो सकता है, लेकिन अब हो गया है कि तंबाकू से कैंसर होता ही है, तो 100% कैंसर हो सकता है।
2: बिल्कुल।
1: क्या तंबाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो खुद इसका सेवन नहीं करते?
2: जी हाँ, तंबाकू का असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो इसका खुद सेवन नहीं करते हैं, जिसे हम सेकेंड हैंड स्मोक भी कहते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के आसपास मौजूद लोग भी धुएं के जरिए हानिकारक रसायनों के संपर्क में आते हैं और ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है।
1: यानी जो व्यक्ति खुद सिगरेट पी रहा है वो तो नुकसान है ही, आसपास के लोगों के लिए भी नुकसानदायक है।
2: बिल्कुल सही।
1: आजकल युवा पीढ़ी तेजी से तंबाकू की ओर आकर्षित हो रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: युवाओं को

0: समझना होगा कि तंबाकू कोई स्टाइल या फैशन नहीं है, यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। स्वस्थ जीवन, खेल, योग और सकारात्मक गतिविधियां अपनाना ज्यादा बेहतर है।
1: जी हाँ, मतलब कहना चाहते हैं आप कि अगर खेल में या गेम जो पसंद है, कोई हॉबी उनकी है, अगर उसमें लग जाए तो स्मोकिंग और सिगरेट से और तंबाकू से दूर हो सकते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि स्मोकिंग या तंबाकू को यूज करना इस तरह से है जैसे घुन लगना, आदमी के शरीर को अंदर अंदर ये बिल्कुल घुन की तरह खोखला कर देता है, बीमारियां घर कर लेती हैं, ये इसके दुष्प्रभाव हैं, इसलिए तंबाकू को छोड़ना बहुत जरूरी है।
1: अगर कोई व्यक्ति तंबाकू या सिगरेट छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए?
0: अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है, पहले तो उसको इच्छा शक्ति रखें कि वो तंबाकू छोड़ना चाहता है, परिवार और दोस्तों का सहयोग लें, डॉक्टर या काउंसलर से सलाह लें, तनाव कम करने के लिए योग और व्यायाम करें, तंबाकू की जगह हेल्दी आदतें अपनाएं, और इसके साथ ही भारत सरकार की तरफ से एक्यूट लाइन सर्विसेज में भी वो फोन कर सकते हैं, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800112356। इस टोल फ्री नंबर पे वो तंबाकू छोड़ने के लिए सलाह दे सकते हैं।
1: आपने सही बताया, क्विट लाइन नंबर आपने बताया हमारे श्रोताओं को 1800112356, जिस पर सलाह लेकर ये तंबाकू या सिगरेट छोड़ी जा सकती है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे का पखवाड़ा चल रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि 31 मई से लेकर 14 जून तक ये गतिविधियां की जाएंगी, तो कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है सर?
0: वर्ल्ड नो तंबाकू डे फोर्टनाइट के पखवाड़े पे हम विभिन्न तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उसमें स्कूलों और कॉलेजों में पोस्टर कंपटीशन कराना, जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे हेल्थ टॉक कराना, स्लोगन लेखन, रैली, शपथ ग्रहण, जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं, ताकि समाज में तंबाकू के खिलाफ जागरूकता बढ़े। साथ ही एनफोर्समेंट ड्राइव भी की जाती है, जिसमें कोटपा 2003 और दिल्ली एक्ट 1996 के तहत कार्रवाई की जाती है।
1: अंत में श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं आपके श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आइए हम सब मिलकर तंबाकू मुक्त जीवन का संकल्प लें। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के लिए तंबाकू से दूरी बेहद जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमारे श्रोताओं को।
0: दोस्तों याद रखिए, तंबाकू छोड़िए, जिंदगी को अपनाइए। इसी संदेश के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार सर।

0: वतन फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

गोल से चल रहा है हमारा कार्यक्रम घर आंगन, जो खास महिलाओं के लिए हम लेकर आते हैं। और अभी तंबाकू और सिगरेट सेहत के लिए कितना हानिकारक है, ये डॉक्टर संजय स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ने आपको बता ही दिया। उन्होंने कहा कि इसके इस्तेमाल से जो लोग समझते हैं ना कि फैशन है, ये फैशन नहीं है बल्कि एक बुरी आदत है, और सकारात्मक गतिविधियों से इस पर काबू पाया जा सकता है, जिसमें से एक गतिविधि है योग। जी हाँ, योग के नियमित अभ्यास से शरीर, मन और विचारों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये केवल वजन घटाने का साधन नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एक पूरी प्रणाली है। और 21 जून को हम विश्व योग दिवस भी मनाएंगे, तो शुरुआत क्यों ना अभी से कर दें। बहुत सारे फायदे हैं योग के। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है शरीर में, मांसपेशियां जो हमारी कैड़ी हो जाती है ना, उनका कड़ापन दूर होता है, शरीर का लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं, शरीर की ताकत बढ़ती है, बेहतर मुद्रा हमें मिल पाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जिससे बैठने और खड़े होने का जो पोस्चर है वो सुधर जाता है। वजन तो नियंत्रित रहता ही है, तो सबको ही पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो योग इसीलिए करते हैं कि उनका वजन ठीक रहे। सूर्य नमस्कार जैसे गतिशील आसन कैलोरी बर्न करने और मोटापा घटाने में मदद करते हैं। और सभी को पता है कि मोटापा ही सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। अगर आपने वजन को नियंत्रित कर लिया तो समझ लिए बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो गए, पाचन क्रिया में सुधार आता है, वज्रासन और पवन मुक्तासन जैसे आसन गैस, कब्ज और अपच की समस्या को ठीक करते हैं। और मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मानसिक फायदे हैं योग के। तनाव में कमी आती है, प्राणायाम और ध्यान करने से मानसिक तनाव और चिंता और डिप्रेशन भी कम होता है, बेहतर फोकस मिल पाता है, मन शांत रहता है, जिससे काम और पढ़ाई में एकाग्रता रहती है, नींद भी अच्छी आती है क्योंकि दिमाग की नसें शांत रहती हैं, अनिद्रा की बीमारी भी दूर होती है, दिल मजबूत होता है, फेफड़ों की क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाती है, प्राणायाम से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। क्या बताऊं, बहुत सारे फायदे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर भी है योग। अब देखिए ना, शरीर की बीमारियों से लड़ने

प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, तो क्यों नहीं हमारी महिलाएं घर के समय क्यों नहीं निकाल पा रही हैं। अब देखिए ना, अब आज का प्रोग्राम सुनकर आप लोगों को योग के लिए सोच लेना है कि बस हमें योग की शुरुआत कर देनी है। हमें नहीं सोचना कि आज की बात कल पे डालनी है, आज और अभी से हम योग की शुरुआत करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत भाभी फिल्म से था। अब हम अपने श्रोताओं से इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी सारी चर्चाएं कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम में लेकर आते हैं हम बहुत सारी बातें। अब ये संवाद एक तरफा नहीं रहना चाहिए, आप भी हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। फिर से बता देते हैं fmgoldga@gmail.com। आप ईमेल हमें भेजिए प्रोग्राम में क्या चाहते हैं और प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे बिजली बचाने की। देखिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आज के जो हालात है ना उसमें पर्यावरण जो है वो बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को बचाया जाए। देखिए ना गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड है तो वो बहुत ज्यादा है, तो गर्मी जो इतनी ज्यादा हो रही है इसके लिए जरूरी है कि आप बिजली बचाइए, एक आदत बनाइए इसको। बिजली बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है बल्कि एक जीवन शैली और आदत है। जब आप छोटी छोटी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो बिजली की बचत अपने आप होने लगती है। बिजली बचाने के लिए आप कुछ खास काम यानी खास कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत छोटी छोटी आते हैं। कमरा छोड़ते ही बटन बंद कर दें, यानी कि जो स्विच है वो बंद कर दें। कमरे से बाहर निकलते समय वहां की लाइट, पंखा और एसी बंद करने की आदत डालनी चाहिए। और इसके लिए दूसरे जो सदस्य हैं घर में उनको भी कहिए कि जहां से निकले अगर एक्स्ट्रा लाइट जल रही है तो उसे बंद कीजिए।

अब फैंटम लोड पड़ता है जिसे आप गैजेट लगे छोड़ देते हैं, टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं, मोबाइल को चार्ज होने के बाद चार्जर को स्विच में लगा छोड़ देते हैं, या एसी को भी रिमोट से बंद कर देते हैं। ये स्विच ऑन रहने पर ये जो उपकरण है लगातार बिजली सोखते रहते हैं, इसलिए मेन स्विच बंद करना जरूरी है। चार्जर, लैपटॉप, टीवी, माइक्रोवेव के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए, खत्म होने के बाद जब आपका काम हो जाए तो मेन बोर्ड से स्विच बंद कर दीजिए। देखिए, इस बारे में हमें और भी बातें करेंगे, एक पहले गीत सुन लेते हैं।

हुसैन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बात चल रही थी बिजली बजाने की। जी हाँ, उसमें हमने आपको बता दिया कि स्विचेस बंद करने हैं और प्लग को सॉकेट से बाहर निकालना है। एक चीज और है, सूरज की रोशनी का सम्मान कीजिए, यानी नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कीजिए। दिन के समय कमरों की खिड़कियों के पर्दे खोल कर रखिए ताकि प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके। रात को बल्ब या जो रोशनी या आप लाइट जला दें उसकी जरूरत ही ना पड़े। धूप में कपड़े सुखाइए। वॉशिंग मशीन के ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें। आजकल तो गर्मी है, धूप में

सूख जाते हैं। कपड़ों को धूप में सुखाने की जो आदत है ना, इससे बहुत बिजली बचती है। फिल्टर की सफाई कराइए। अगर एसी आपका है, उसकी फिल्टर अगर साफ नहीं है तो भी वो बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं। और फ्रिज में बेवजह जो सामान ठूस दिया जाता है ना, कि आप फ्रिज में भरे जा रहे हैं, उससे भी फ्रिज बहुत बिजली खाता है। इसलिए थोड़ी सी जगह खाली रखें ताकि उसमें अंदर एयर सर्कुलेशन यानी हवा घूमती रहे। गर्म खाना सीधे फ्रिज में नहीं रखना है, पहले बाहर ठंडा करना है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिससे आप बिजली बचा सकते हैं। अब गर्मी के दिनों में एसी को 24 डिग्री पर अगर आप चलाएंगे तो ये आदत बहुत अच्छी है, ताकि जो आप ये तापमान है मानव शरीर के लिए आरामदायक है और बिजली के बिल को भी नियंत्रित सकता है। रात को सोते समय टीवी एसी में स्लिप टाइमर लगाने की आदत डालें ताकि वो रात भर बेवजह चलते ना रहें। कई बार चला हुआ टीवी छोड़ देते हैं, अरे ऐसा नहीं है, आप आदत डालिए कि ये चीजें बंद करनी है। सोने से पहले सारा घर एक बार चेक करना है कि कोई बेवजह बिजली तो नहीं चल रही, कोई सॉकेट में कुछ प्लग तो नहीं लगा हुआ। ये आदतें न सिर्फ घर का बजट सुधारेंगी बल्कि देश में ऊर्जा के संकट को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देंगी।

अनपढ़ फिल्म की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और अब बात करेंगे गर्मी की। जो इतनी लू चल रही है ना, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

देश के ज्यादातर इलाकों में लू और प्रचंड गर्मी का असर है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कुछ हिस्सों में लू जैसी समस्याओं को लेकर रेड अलर्ट भी हो गया है। गर्मी के चलते बच्चे, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग, बीमार या पहले से जुड़ी किसी समस्या का सामना कर रहे लोगों को बहुत सजग रहने की जरूरत है। इस लापरवाही से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सूती कपड़े पहने, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें अगर आपको बाहर जाना है। गर्मी के चलते अगर थकान हो रही है तो कुछ लोग इसे सामान्य मानकर टाल देते हैं, जबकि ये शरीर के भीतर बिगड़े संतुलन का संकेत हो सकता है। गर्मी के दुष्प्रभाव से बचने का सबसे आसान तरीका है स्वयं के स्तर पर बचाव करें, लक्षणों को गंभीर होने से पहले ही रोक दें। अगर गर्मी के चलते चक्कर या बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाना चाहिए। उसे ढीले कपड़े पहनाकर आराम दीजिए, गीले कपड़े लगाएं, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और पंखा भी किया जा सकता है उसके ऊपर। अगर आप सड़क पर हैं तो हाथ से पंखा कीजिए या किसी कागज से थोड़ा सा उसे साइड में ले जाइए। बेहोशी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। इतनी गर्मी में अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप तेज गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल जरूर साथ रखें। चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल कम कर दें। ORS और नींबू पानी को पीना भी लाभदायक हो सकता है।

कान जाग उठा इस फिल्म में अभी आपने सुना गीता दत्त और आशा भोसले को। बात चल रही थी गर्मी की। अब गर्मी है तो प्यास तो लगेगी ही। अब बार बार प्यास ना लगे और प्यास लगे तो भी पानी पीते रहे, मतलब ये ना सोचिए कि प्यास लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना बहुत जरूरी है। धूप में बाहर निकलते समय सिर को ढक कर रखें, हल्के रंग और सूती कपड़े पहने, दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें, ORS नींबू पानी छाछ ये सब इनको पीते रहें, इनका सेवन करते रहें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अब सावधानी अगर बरती जाएगी तो शरीर जो है आपका सुरक्षित रहेगा। तेज गर्मी जो लू चल रही है ना उसमें शरीर हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। मौसमी फल खाएं, ताजी सब्जियां लें।

दही, छाछ, नारियल पानी का सेवन करना भी बहुत जरूरी है। अब किसी को कैसे ही स्ट्रोक लगेगा, ये ना आपको लगता है कई बार, अब हमारे घर की महिलाएं हैं, बच्चा बाहर से ट्यूशन पढ़ के आया, अब पता नहीं चलता कि क्या हुआ, अगर बच्चे को तेज सिर दर्द है, कमजोरी है, चक्कर आ रही है या तेज बुखार है, एकदम से शरीर का तापमान बढ़ गया, वो हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, इसमें से कोई भी लक्षण है, सबसे पहले तो ORS का घोल दिया जाए, नींबू पानी दिया जाए, उसके बाद अगर समस्या ज्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। लेकिन लू से बचना बहुत जरूरी है, गर्मी में अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है।

दिल फिल्म के इस गीत में आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। अपना और अपनों का ध्यान रखें, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और इस कार्यक्रम से यानी घर आंगन से मुझे यानी राधा पाठक को दे इजाजत। नमस्कार।

आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त

0: तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृहमंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. More than 10 people lost their lives and several others are rescued after a fire broke out at a hotel in Malviyanagar, Delhi this morning. According to the Delhi Fire Services, 15 fire tenders rushed to the spot to douse the fire. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the fire incident. In a social media post, Mr. Modi said that authorities are providing all possible assistance to those affected. He also wished a speedy recovery to the injured. Mr. Modi also announced that an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund will be given to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also expressed grief over the tragic loss of lives in the fire incident. In a social media post, Ms. Gupta said that immediately after receiving information about the incident, teams of Delhi Fire Services, Delhi Police, District Disaster Management Authority, CATS Ambulance Services and other emergency response agencies were mobilized and launched the rescue and relief operations. President Draupadi Murmu today inaugurated the National Conclave on Strengthening of Integrated Tribal Development Agencies and Integrated Tribal Development Projects in New Delhi. Addressing the occasion, the President said that tribal society living across the country is culturally very rich and efforts must be made to bring the tribal community forward. She said development must reach the last home and the last village. Ms. Murmu expressed concern that there are still some sections of tribals who are unaware of the various schemes of the government.
2: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स और है पीबीटी जी सबसे पिछड़े अभी भी कोई पेड़ के मंच के रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसीलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
1: वेस्ट बंगाल फॉर्मर रूलिंग पार्टी द तृणमूल कांग्रेस इज इन टर्मोइल एंड ऑन द वर्ज ऑफ स्प्लिट। एक्सपेल्ड टीएमसी एमएलए ऋतुव्रता बनर्जी claims the support of nearly 60 MLAs, a number that could decisively shift the control in the assembly. His faction has already written to Speaker Rathindra Bose asking to be recognized as the real TMC. In a counter move, TMC announced Shobhandev Chattopadhyay as the leader of the house, with Ashima Patra and Nayan Bandopadhyay as deputies and Farhad Hakim as chief whip. Former Chief Minister Mamata Banerjee at a rally in Kolkata accused the BJP of orchestrating the split. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said that nearly 40,000 students have successfully submitted

0: India has surpassed the United States in annual solar capacity additions to become the world's second largest solar growth market in 2025. Highlighting the remarkable achievement, Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi today said that the country's solar growth story is setting global benchmarks and driving record capacity additions through strong policy support, innovation and world-class infrastructure. In Karnataka, Congress Legislature Party leader D.K. Shivkumar will be sworn in as the 25th Chief Minister of the state by Governor Thavarchand Gehlot at 5 past 4 p.m. in Bengaluru today. Former Home Minister Dr. G. Parmeshwar will be sworn in as the Deputy Chief Minister. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है दोपहर के 1:10 और ये हुए पूरे 18 सेकंड. स्वागत है आप सभी का. जी हाँ, ये जो वक्त है ये किस चीज का है? ये है कार्यक्रम एक ही फिल्म से. और आज इस सफर में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली. तो कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार. और जो पहला गाना मैं आपके साथ में यहाँ पर साझा करने वाली हूँ यही बता देगा आपको कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है. और वो हमेशा जो मैं पहली आपसे पूछती रहती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि हमारी फिल्म कौन सी है और इस फिल्म से जुड़ी आपकी यादें भी मैं जरूर यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहूंगी. तो आप लोग बस इस गाने को सुनिए. इतना जरूर बता दूं कि ये 60 के दशक की फिल्म है. चलिए मैं आपको साल भी बता देती हूँ. ये 1966 की फिल्म है. तो बस आप इस गाने को सुनिए. और ये भी कि ये फिल्म ना अपने आप में एक पूरा पूरा दस्तावेज है एक ऐसे लेखक का जिसने अपनी और अपना नाम साहित्य की दुनिया में बहुत बहुत मकबूल किया. तो बस ये तो बहुत सारे मैंने आपको हिंट्स दे दिए. इन सबको अपने दिमाग में जगह दीजिए और अब इस गाने को सुनकर मुझे बताइए कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ.

अच्छा, तो आप लोग बिल्कुल सही समझे, ये फिल्म है तीसरी कसम। तीसरी कसम ना केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति और एक निष्कलुष प्रेम का एक ऐसा सिनेमाई दस्तावेज है जिसकी प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती गई। आज इसे भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिना जाता है, जबकि रिलीज की समय ना ये अगर देखा जाए तो कमर्शियली उतनी ज्यादा सफल नहीं हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं इस फिल्म की, तो ये जो कहानी है, ये इस फिल्म की कहानी प्रसिद्ध हिंदी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिकता के सबसे बड़े हस्ताक्षरों में माने जाते हैं। उन्होंने बिहार के ग्रामीण जीवन, बोली, लोकगीत और लोक विश्वासों को अपनी रचनाओं में जीवंत किया है, है ना दोस्तों। और अगर आपको बता दें कि ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले लिखा था नबेंदु घोष ने, और इसके संवाद ना स्वयं रेणु जी थी, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखे थे। इसीलिए फिल्म में ना जो ग्रामीण भाषा और परिवेश की प्रामाणिकता है ना, वो अद्भुत है। अच्छा, आपको ना इसमें एक चीज बताती हूँ, अगर आपने कभी गौर किया हो कि इस फिल्म में ना बार बार जो हमारे हीरो हैं, जी हाँ राज कपूर जी, तो हमारे हीरामन साहब, वो बार बार ना कुछ भी बात होती है तो उसके बाद में इश ऐसा कहते थे। अब ये जो इश कहना है ना, आप इसको भले ही बंगाल से जोड़े, लेकिन जो पूरा वो जो आंचलिक वो जो अंचल है ना, वहां पर ग्रामीण लोगों के मुंह से इस तरह की बातें जरूर निकलती हैं। तो अगर आपने अगर इस फिल्म को नहीं देखा हो तो दोबारा देखिए, और अगर आपने देख लिया हो तो मेरी इश के लिए दोबारा उसको देखिएगा। लेकिन अभी हम आपकी बातें भी शुमार करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा इन मैडम को सुन लेते हैं जो बहुत खूबसूरती से क्या कह रही है। देखिए।

मारे गए गुलफाम, ये है इस कहानी का मूल नाम, इस उपन्यास का मूल नाम जिस पर आधारित फिल्म तीसरी कसम की आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस फिल्म के कलाकारों की बात करते हैं तो राज कपूर हैं, जिनका किरदार इस फिल्म में हीरा मन नाम का एक व्यक्ति है उसका है। फिर उसके बाद वहीदा रहमान है, वो है हीरा बाई की भूमिका में। इफ्तिखार है, ठाकुर विक्रम सिंह, ए के अंगल है, किशोर मुखर्जी है, असीत सेन है, दुलारी है। अब ना इस फिल्म में चूंकि हीरामन और हीराबाई दोनों के नाम ही एक जैसे हैं, तो एक बहुत प्यारा सा इसमें एक वो वहीदा रहमान का एक बहुत प्यारा सा एक शब्द है जो अपने हीरामन को कहती है, वो है मीता। मीता इसलिए कहती है क्योंकि दोनों के नाम शुरू होते हैं हीरा से, तो क्योंकि दोनों एक नाम है, हम नाम है, इसीलिए वो पूरे सफर में उनको मीता नाम से बुलाती है। मीता मतलब दोस्त। तो ये तो हुआ इस फिल्म के बारे में। अब इस कहानी का जो सार है वो इस तरह का है कि हीरामन ना एक सीधा साधा बैलगाड़ी चलाने वाला इंसान है। उसने जीवन में दो घटनाओं जो हो चुकी हैं उसके जीवन में, उसके बाद उसने दो कस्में खाई हैं। पहला तो ये है कि कोई ऐसा सामान वो अपनी बैलगाड़ी में नहीं ले जाएगा जो प्रतिबंधित हो, क्योंकि वो इस बारे में एक बार जब लेके जा रहा था तो किसी मुश्किल में फंस गया था। तो उसने पहली कसम खाई थी कि अब वो ये प्रतिबंधित किसी भी तरह का सामान अपने साथ नहीं लेकर जाएगा। दूसरी उसने एक और कसम खाई थी, वो थी कि वो अपनी गाड़ी में कभी भी बांस लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार उसने बांस ढोया तो बांस ढोने की वजह से उसकी गाड़ी का एक और गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट हो गया था, और इस वजह से उसने दूसरी कसम खाई थी। कौन सी? कि मैं बांस वाली कोई भी चीज अपनी गाड़ी में नहीं ढोऊंगा। तीसरी कसम क्या थी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि तीसरी कसम खाने तक की नौबत क्यों आती है। वो इसलिए आती है कि एक दिन उसे नौटंकी में नाचने वाली मतलब नर्तकी हीराबाई को मेले तक पहुंचाने का काम मिलता है। लगभग 30 घंटे की का ये सफर है, और इसमें दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा दोस्ताना आत्मीय रिश्ता बन जाता है। हीरामन हीराबाई को एक देवी की तरह देखता है, जबकि समाज उसे एक नर्तकी स्त्री के रूप में देखता है। यही सीना फिल्म प्रेम, सामाजिक दृष्टि और मानवीय गरिमा का मार्मिक आख्यान बन जाती है। और अंत में जो हीरामन जो एक कसम खाता है वो यही होता है कि वो कभी भी अपनी गाड़ी में किसी भी नर्तकी को नहीं लेके जाएगा। ये उसकी तीसरी कसम होती है। लेकिन वो इस तक पहुंचता कैसे है, ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगी और आपकी मेल्स भी जरूर अपने साथ लूंगी। लेकिन इसके पहले ये बहुत प्यारा सा एक गाना है जो अगर आपने कभी देखा हो तो बहुत क्यूट सा गाना है, और इसको आप देख के दुल्हनों की आपको जरूर याद आ जाएगी। तो आइए सुनते हैं तीसरी कसम का ये एक और गीत।

आपको ये गीत याद है? हाँ, बैलगाड़ी में एक नई नवेली दुल्हन जा रही है, पीछे पीछे पूरे बच्चों की एक टोली उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी में जा रही है। तो ये है फिल्म तीसरी कसम। और अब मैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के मेल शामिल करती हूँ। तो ये हमारे साथ कौन है? जी हाँ, ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिंदन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ये जानकर, हमें बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। फिर ये है अजीत भाव सर जी, वीरम गांव गुजरात से, और लिख रहे हैं कि प्रिय आरजी होस्ट सोनाली जी नमस्कार, और राज कपूर और गीतकार मित्र शैलेंद्र ने बनाई है, इस बारे में भी लिख रहे हैं, शुक्रिया। फिर ये कौन है? ये है अरे बाबा, आपने तो बहुत सारी जानकारी से लिख दी, जब मैं धीरे धीरे आपको बताने ही वाली थी, तो इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कौन है? ये है जिन्होंने हमें पूरी जानकारी से भरी हुई मेल दी है, वो गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये है कौन? ये है चिरमिरी कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालंदरी लहरे, और इन्हें वो गीत बहुत पसंद आया, कौन सा? मारे गए गुलफाम जी, धन्यवाद। ये है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बब्बू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, और लिख रहे हैं कि इन्हें रोचक जानकारी और मधुर गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। रोहित वशिष्ठ जी लिख रहे हैं सर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, हम तीसरी कसम की बात कर रहे हैं, तीसरी मंजिल की नहीं। और लेकिन आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये है प्रेम सागर, शुभ लता, ये है खजाने गेट अमृतसर से, खजाना गेट अमृतसर से। फिर है ये भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, ये दतरेंगी से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर ये है गंज गुंडवारा से, रामसुल, कमर राही, शाहिन, फातिमा, अदनान खान, अनु खान, लिख रहे हैं सोनाली जी आदाब, और इन्हें कहानी और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, और आपको भी मेरा आदाब। फिर ये कौन है? ये है मारे गए गुलफाम उपन्यास से बनी फिल्म तीसरी कसम, चैलेंजर ने बनाई थी, ये है, अच्छा हम ले चुके हैं, ये है सिरसंगम रेडियो श्रोता ग्रुप। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके निर्देशन की विशेषताओं की, तो चलते आपको ये भी बता दूं कि भासु भट्टाचार्य ने फिल्म को मेलोड्रामा बनने नहीं दिया, उन्होंने कैमरा पात्रों का पीछा नहीं, उनका जो कैमरा है वो ना कैरेक्टर्स के पीछे पीछे नहीं जाता, उनके साथ चलता है, और ना संवादों से अधिक वहां पर कहते हैं कि संवाद से ज्यादा मौन बोलता है इस फिल्म में। जी हाँ, जो बातें बोलकर नहीं की जाती उससे ज्यादा अपने एक्सप्रेशंस और एक्टिंग से हमारे कलाकारों ने इस फिल्म में अपने आप को बोला है, अपने आप को जाहिर किया है। फिर ना एक चीज और भी है कि इसमें ना कहते हैं कि निर्देशन की विशेषताओं में एक चीज और आती है कि आप किस तरह से प्रेम को दर्शाते हैं, तो इसमें ना प्रेम को व्यक्त नहीं किया जाता, इसमें प्रेम को महसूस कराया जाता है। पूरा जीवन इस फिल्म में जो है वो एक लोक जीवन की लय में बहता हुआ

फिल्म हिंदी सिनेमा के उस दौर में बनी जब भव्यता और नाटकीयता का बोलबाला था। इसीलिए इस फिल्म की जो सादगी है ना, ये सादगी इस फिल्म की क्रांतिकारी चीज बनी गई थी। तो अब हम आपको इस फिल्म का वो गाना सुनाते हैं जो इस फिल्म का बहुत ज्यादा ही फेमस गाना है और हमें भी बहुत पसंद है। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

देखिए गाना तो इतना ज्यादा सबको पसंद किया जाता है, सबके द्वारा पसंद किया जाता है कि इसके बारे में क्या बोले। बैकग्राउंड भी बज रहा है, मैं आपको इसके फिल्म के बारे में दो तीन बातें और बताना चाहूंगी। देखिए इस फिल्म में ना कभी हीरो को एकदम हीरो जैसा नहीं बताया गया, उसे बहुत एक सामान्य इंसान की तरह दिखाया गया है। इस फिल्म में भी ना इस गाने की पिक्चराइजेशन में अगर आपने ध्यान दिया हो तो राज कपूर बड़े आराम से आते हैं, ढफली उठाते हैं और ढफली बजाना शुरू कर देते हैं एक आम इंसान की तरह। तो ये इस फिल्म की खासियत है। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे दोस्त हैं, ये हैं पंजाली नवाकर, रोजी डिकोस्ट्रा और धर्मेंद्र छिपा। ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसे गाया है मन्ना डे ने और उनके साथ हैं उनके बहुत सारे साथी कलाकार। हमारे साथ धर्मेंद्र छिपा जी जुड़े हुए हैं, कपिल छिपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। और देखिए वक्त ना बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है तो मैं आपको फटाफट आपके नाम बता देती हूँ। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। फिर उषा मोहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और रोडी मैंने आपको बता दिया है, रोजी डिकास्ट्रो जुड़े हैं हमारे साथ, पर्ल डिकास्ट्रो, जॉन डिकास्ट्रो और विलिस डिकास्ट्रो भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिर अजीत भावसार जी हमारे साथ हैं, स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ हैं, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं आपको एक ऐसा गाना सुनाने वाली हूँ जो अलग ही जॉनर का है, एक अलग ही तरह का है। बता दूं आपको कि संगीत दिया है संगीतकार शंकर जय किशन ने, शैलेंद्र के बोल हैं हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने साथ में इसके गीत लिखे हैं। और इसका जो अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के कुछ रोचक तथ्यों की तो वो यही है कि इस फिल्म में ना कहते हैं कि राज कपूर ने सिर्फ एक रुपया का अपना पारिश्रमिक लिया था और मूल कलाकार राज कपूर और वहीदा रहमान नहीं थे। शुरुआत में महमूद और हीराबाई, पहले हीरामन के रोल के लिए महमूद और हीराबाई के लिए मीना कुमारी पर विचार हुआ था। फिर उसके बाद में राज कपूर और वहीदा रहमान चुनेंगे। रिलीज के समय दर्शकों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था और बाद में लेकिन इसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया और ये बहुत खूबसूरत फिल्म है।

तो घड़ी की सुइयां लगातार इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि कार्यक्रम का सफर यहीं पर खत्म करना होगा हमें, लेकिन इस गाने के साथ आपको छोड़ूंगी। आपको बता दूं कि इस

काशी पुरस्कार मिला और सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म का 1966 में, और अन्य सम्मान इसको मिले हैं बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और इसे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी नामांकन मिला था। तो ये थी आज की फिल्म तीसरी कसम। आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे पंजाबी में।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं रमेश लाल। पहला चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच एकीकृत कबायली विकास एजेंसियां अते एकीकृत कबायली विकास प्रोजेक्टां नूं मजबूत करन बारे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिल्ली के मालविया नगर विच अज एक होटल विच अग लगन कारण 21 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत लड़ी की परिभाषा अते सीमा तय करने संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करने लई एक उच्च पदरी माहर कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस के डी के शिवकुमार अज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। भारत अमरीका पिछे छड्डदिआं सालाना सूरजी ऊर्जा समर्था वाधे 2025 तक दुनिया का दूजा सब तो वड्डा सूरजी ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली विच एक एकीकृत कबायली विकास एजेंसियां अते एकीकृत कबायली विकास प्रोजेक्टां नूं मजबूत करन बारे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर के कबायली भाईचारे सभ्याचारक तौर पर अमीर ने अते उन्हां दे विकास नूं अगे वधाउण लई यतन करने चाहीदे ने। उन्हां जोर दे के कहा कि विकास देश दे हर पिंड अते व्यक्ति तक पहुंचना चाहीदा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने चिंता प्रगट की कि कुछ कबायली भाईचारे अजे भी वख-वख सरकारी योजनावां तों अनजाण ने। यह समागम जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत किया जा रहा है। यह सम्मेलन देश भर में कबायली विकास की जिम्मेवार संस्थागत प्रणालियों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा, जिस विच शासन सुधार, तालमेल विधि और तकनोलॉजी आधारित सेवा प्रदान करना शामिल है। कॉन्फ्रेंस में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अज सवेरे दिल्ली के मालविया नगर में एक होटल में अग लगन कारण 21 लोगों की मौत हो गई अते 40 होरां नूं बचा लिया गया है। दक्षणी दिल्ली के DCP अनंत मित्तल ने कहा कि अग बुझाने वाली 8 गड्डियों की सहायता नाल अग नूं सफलता नाल बुझा दिता गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अग बुझाऊ सेवा अते होर हंगामी प्रतिक्रम देने वालों के तालमेल वाले यत्नों राही 40 तो वध व्यक्तियों नूं बचाया गया है अते डाक्टरी इलाज लई नेड़ले हस्पतालों में भेज दिता गया है। वधेरे जानकारी दिंदा उन्होंने दस्सिया,
2: हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इंस्पेक्शन लिया जाए। PD को बोला है कि यहाँ पे किस तरह कैसे कितने लाइसेंस दिए हुए आपने, उनका जो है रूटीन चेकिंग करवाई जा सके। आगे हम संबंधित विभागों को भी निर्देश देंगे कि इस तरह के रूटीन चेक कार्रवाई अपनी करते रहेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना च हुए जानी नुकसान से दुख प्रकट किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने जख्मियों के छेती ठीक होने की कामना भी की। श्री मोदी ने यह भी ऐलान किया कि हरेक मृतक के रिश्तेदार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड विचों 2-2 लाख रुपए की राहत रकम दी जाएगी। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने भी घटना में हुए जानी नुकसान से दुख प्रकट किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने जख्मियों के छेती ठीक होने की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटना में हुए जानी नुकसान से दुख प्रकट किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने तो तुरंत बाद दिल्ली अग बुझाऊ सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आफत प्रबंधन अथॉरिटी, एम्बूलेंस सेवावां अते होर हंगामी एजेंसियों दी टीमां बचाव अते राहत कार्यां विच लगे हुए ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति ते नेड़े नज़र रख रही है अते प्रभावित परिवारां नूं लोड़ीदी डाक्टरी सहायता अते सहायता दित्ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत लड़ी की परिभाषा अते सीमा तय करने संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करने लई एक उच्च पदरी माहर कमेटी का गठन किया है।

0: 1.8% पूरा हो चुका है। आखिर चुनिया खबर एक बार फिर सुन लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज नवी दिल्ली एकीकृत कबायली विकास एजेंसियां एकीकृत कबायली विकास प्रोजेक्टा मजबूत करने बारे राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया। दिल्ली के मालविया नगर विच आज एक होटल विच अग लगन कारण 21 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत लड़ी की परिभाषा और सीमा तय करने संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा करने लई एक उच्च पदरी महा कमेटी का गठन किया है। भारत अमरीका पिछे छड़दिया सालाना सूरजी ऊर्जा समर्था वाधे 2025 तक दुनिया का सब तो दूजा वड्डा सूरजी ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। इस राशि खबर का यह बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेशी खबर का बुलेटिन तुम शामी 6:20 सुनोगे। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वजीराजम ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और महलुकीन के अफराद खानदान के लिए 2,00,000 रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस बहरान का शिकार हो गई है क्योंकि पार्टी से निकाले गए रुकन असेंबली रिता प्रताप बैनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली के तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत का दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की तशरीह का दोबारा जायजा लेने के लिए आला इख्तियारात के हामिल माहिरीन का पैनल तश्कील दिया है। सीनियर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। भारत शमसी सलाहियतों में सालाना इजाफे के मामले में अमरीका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शमसी तरक्की का बाजार बन गया है। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज मर्दों के सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और आयुष शेट्टी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह लगी जबरदस्त आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस वाके में 40 अफराद को बचा लिया गया। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि आग बुझाने वाली 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने पुलिस, फायर खिदमात और दीगर हंगामी एजेंसियों की मुश्तरका कोशिशों से 40 से ज्यादा लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है और उन्हें तिब्बी इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालविया नगर इलाके में आग लगने के वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुक्काम सभी मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवायकीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के कौमी राहत फंड से 2,00,000 रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भी दिल्ली के मालविया नगर इलाके के एक होटल में आज सुबह आग लगने के अफसोसनाक वाकये में कीमती जानों के इतलाफ पर ताजियत का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासर खानदानों के लिए हिम्मत और हौसले की दुआ की। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी मालविया नगर में आग लगने के हादसे में जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, कुदरती आफत से निमटने की जिला अथॉरिटी, कैट्स, एम्बुलेंस खिदमात और दीगर हंगामी खिदमात की एजेंसियों की टीमों को मुतहरक किया गया और राहत और बचाव कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। वजीर आला ने कहा कि इन टीमों की तेज और बरवक्त कार्रवाइयों ने कई अफराद को बचाने और मुतासिरा अहाते के इनखला में मदद की। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली हुकूमत सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए है और मुतासिरा कुंभों को हर तरह की तिबी मदद और मुआवनत की पेशकश की जा रही है। मगरबी बंगाल की साबिक हुक्मरान पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में अफरा तफरी का आलम है और ये पार्टी तकसीम होने के दहाने पर पहुंच गई है। टीएमसी से निकाले गए रुकन असेंबली रिताब्रता बैनर्जी ने तकरीबन 60 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल होने का दावा किया है। इस तादाद से असेंबली कंट्रोल में फैसला कुन तब्दीली हो सकती है। उनके ग्रुप ने पहले ही असेंबली स्पीकर रथिंद्रा बोस को एक खत तहरीर करके खुद को हकीकी टीएमसी के तौर पर तस्लीम किए जाने की दरख्वास्त

0: है। दूसरी जानिब टीएमसी ने शोभान देव चट्टोपाध्याय को एवान कलीडर और अश्मिता पात्रा को और न्याया बंदोपाध्याय को उनका नायब मुकर्रर कर दिया है, जबकि फरहाद हकीम चीफ व्हिप होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली में बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो टीएमसी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड कबायली तरक्याती एजेंसियों और इंटीग्रेटेड कबायली तरक्याती प्रोजेक्टों को मुस्तहकम करने से मुतालिक कौमी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क भर में रह रहा कबायली समाज सकाफती एतबार से काफी गुनागुनियत का हामिल है और कबायली बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जानी जरूरी हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि आखिरी घर और आखिरी गांव तक तरक्की का पहुंचना जरूरी है। मोहतरमा मुर्मू ने इस बात पर फिक्रमंदी का इजहार किया कि अब भी कुछ कबायली तबकात हुकूमती स्कीमों से वाकिफ नहीं हैं।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की तशरीह और इसकी नक्शा साजी से मुतालिक मरकज की रिपोर्ट का एक आजादाना जायजा लेने की गरज से माहिरीन की आला इख्तियारात वाली कमेटी तश्कील दी है। भारत की जंगलात से मुतालिक तहकीक और तालीम की काउंसिल के डायरेक्टर जनरल कंचन देवी इस कमेटी की सरबराही करेंगी। पैनल से इस साल 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली इको निज़ाम के तहफ्फुज़ से मुतालिक कलीदी मसाइल हल करने की गरज से एक गैर जानिबदाराना और साइंसी जाँच की जरूरत है। कर्नाटक कानून साज पार्टी के रहनुमा डीके शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। गवर्नर थावरचंद गहलोत आज दोपहर 4:05 पर बेंगलुरु में जनाब डीके शिव कुमार को हलफ दिलाएंगे। साबिक रियासती वजीर दाखला जी परमेश्वर नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। 12 कानून साज अराकीन भी आज बुजरा के तौर पर हलफ लेंगे। मुंतखब वजीर आला डीके शिव कुमार आज हलफ लेने वाले कानून साजों के अलावा साबिक वजीर आला सिद्धरमैया, बीजेपी के सीनियर लीडर बी एस येदियुरप्पा और जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर एच डी देवेगौड़ा से आज सुबह मुलाकात की। हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने के लिए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजहबी रहनुमाओं, मजदूरों, अदीबों, अदाकारों और सरकर्दा कारोबारियों और सनतकारों को मदऊ किया गया है। हलफबरदारी की तकरीब के जाय मकाम लोक भवन की हिफाजत के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। आवाम के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात और 230 सरकारी बस स्टैंड पर बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि लोग हलफ बर्दारी की तकरीब का बराह रास्त नजारा कर सकें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने शमसी तवानाई की सालाना पैदावार की अपनी सलाहियत के मामले में अमरीका पर सबकत हासिल कर ली है और अब वो 2025 में शमसी तवानाई पैदा करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। भारत ने काबिल जिक्र 155 गीगावैट से ज्यादा नसब शुदा शमसी सलाहियत हासिल कर ली है, जिसकी बदौलत मुल्क की 50% गैर रिवायती ईंधन की सलाहियत के अपने हदफ को हासिल करने और मुकर्रर वक्त से पहले ही अपने NDCs को पूरा करने में मदद मिलेगी। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि तकरीबन 40,000 तलबा ने कामयाबी के साथ अपने जवाबी पर्चों की दोबारा जांच की दरख्वास्तें पेश की हैं और इस पूरे अमल को बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल कर लिया गया है। CBSE ने 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलों की वेरिफिकेशन और उनकी दोबारा जांच से मुतालिक ऑनलाइन पोर्टल कल शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी वजीर चिराग पासवान का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें लद्दाख में नए मौके और इम्कानात को उजागर किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लद्दाख का एक मकामी बाशिंदा जिद्दत तराजी, इख्तिरा और मौके की एक दास्तान तहरीर कर रहा है। बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु इंडोनेशिया ओपन के सख्त शुरुआती मुकाबले में कामयाबी के बाद दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। वहीं मर्दों के सिंगल्स में आज HS प्रणॉय का मुकाबला आयरलैंड के नेट यूंगेन और आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के

0: aspect of tribal welfare, including dignified job for youth and school for every tribal child.
1: ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोडमैप बनाना चाहिए. आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए, कहां तक नहीं पाए. पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं. लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा.
0: She stressed that tribal youths must be encouraged to participate in sports activities. Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya has urged India's youth to embrace cycling and lead the movement for a fitter

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गाँव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में

सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है

0: कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
0: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ जरूर।
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी।
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है

0: यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
10: ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
11: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
10: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
11: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
11: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
10: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
10: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
10: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
10: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
11: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
11: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?

0: दोस्त ने जवाब दिया।
1: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
0: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
2: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुम लता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
1: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
2: भारत के सबसे रमणीय

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
1: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
2: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
3: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
2: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया

समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।

0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान,
2: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: अरे क्या कर रहे हो?
5: मुंह के ताक रहे हो? चलो शुरू मारो।
4: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चढ़ जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
5: आगे बढ़ो।
4: अरे कहाँ से?
5: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू।
4: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
6: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
5: ठीक है तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
5: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्राम

0: वहां से भाग खड़े हुए।
1: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
2: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
2: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीण

निकाली, कई दिन मसाइल हल करने की गरज से एक गैर जानबदाराना और समसी जांच की जरूरत है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि तकरीबन 40,000 तलबे

というか、

शानदार शराब गद्दारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से 180 रन का निशाना हासिल कर लिया। एलिस कैप्सी को इस मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते

0: सेक्टर 3 में रहता हूँ, मकान नंबर 548।
1: हाँ हाँ भैया, एक बात और है, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, कोई तकल्लुफ न करना।

शर्माती है, वह शर्माती है।

चल रही है।

के पैसों से चम्मच खरीदेंगे

500 में

Oh, man.

के ध्रुव और सी एस नागर। ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। आइए अब सुनते हैं।

0: मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामीन, अब से लेकर रात 10 बजे तक आप हमारी नशरियात मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ के अलावा मीडियम में 1584 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मीडियम में त्रुग्यानंगी शुशबी नजबी किलो हर्ट्स, मीडियम में स्तोची नगबियानंगी शुशबी नजबी किलो हर्ट्स, दोनों अच्छी मोबाइल ऐप न्यूज़ एन अमेरिका नचस आकाशवाणी करगिली का नाजरीन वक्स पुतुसुत गसुंसुक दिरिंग जकपू बोदू जूनिलजी सुम दिरिंग फ्रचुक वायुत्पी प्रोग्राम जिबेसला खुरे नचायती दुनु क्लिप्सियुत नची जून सलाम पू फ्रदमचन सोशिक सखवचिक्स नल्ला दुआया प्रोग्राम सदाकत ला गुजुबित दि प्रोग्राम ही रखसी कंगन मजत सखम कुरानी तिलावत ना तर्जुमाला मुल्कन पु इन शेख अब्दुल करीम।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

कंचन कमेटी सोसिन भारतीय जंगलात स्कूलला चल चलना शेसी काउंसिल डायरेक्टर जनरल कंचन देवी से एदी कमेटी गोयत बचा सिंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट अरावली एको निजाम पेस्ट्रोनुक्स स्कूल स्पॉन्स फलती बेमी ने फ्यक्स में साइंस चल चल गोस्की यो तीन जरियांग और सर बसों यूनियन टेरिटरी लद्दाख से जिला करगिल छुसकोरी पानीखारी आईपीएस ऑफिसर गुलाम हैदर ला वेस्ट बंगाल केडर पुत सिंह गांव खेत लद्दाख फैसे सा जिला करगिल मीना लेगिन अर्चन वक्श इंजरन को दी लक्षिप स्पेकन जिले एम लस्का में खन शर्बना चो ने सा शेसन लेन चा इंजरे अर्थियांग मबास यांग को दी केडर पुत चास बस सिविल सर्विस पेस्ट्रोलिकस गैस्ट्रिक की खिदमत बे मीना शर्बना चो ने शांस को रिस्ट्रोलन अलधन चा इंजरे जरेन गवे का पानीखारी मीमासन लक्षो इदारा ने गुलाम हैदर ला दी लक्षिप स्पेका मुबारक बातांस पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिंजी विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर अनसगस यूनियन टेरिटरी इंतजामिया नमजे गायब से नफल्ला खोई स्कूल इथम बास्तिया पेमीना बेन खन जुआवला लक्ष्य बचा स्पेका और शूजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्रकिन विलेज एजुकेशन कमेटी सदर असगर अली दी टर्चा दी फेफसूस बेन खोई गम्यूल प्यानो दी विशेष इफ्योक्स पुला गोयर खो मेमीनर गल रप्शन घूम बेगिन जरा ऐसे रेन कर्नाटक कांग्रेस पार्टी लीडर शिव कुमार दिरिंग कर्नाटक की निशुर सखी रसी वसीर आला एस्ट्रोलिका हलफ लेंस रियल खा के गवर्नर थावर चंद गहलोत इस दिरिंग फितोगा बजाज फीना मिनट गए का बेंगलुरु अजनाब डी के शिव कुमार ला नस्कलेन देवाना चोखला दुनमार रियल खा के नाशमाई वजीर डॉक्टर जी परवेश मरला नाई वजीर आला इजोस्ते करना उन स्कल बसों देवर यंग वजीर मिंगा चुंगी सिकां वजीर इजोस्ते करना स्कलेन यंग सुमा मिंगफेश छकन वजीर आला डी के शिव कुमार इस दिरिंग ना लेंसकन कानून साज नंगें वो दुनमा और गलखा वजीर आला सिद्ध रमैया भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर यदु यूरप्पा दुना जनता दल सेक्युलर सीनियर लीडर एच डी देवे गोड़ा नसंगाथो अग्रफिक मलियांख्योस वेंजवेले सदर डेल के रोड्रिक्स एदिरिंग भारत जखमाखे सिक्सकोर के नई दिल्ली हेपसेन दी सिक्सकोर पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बो फ्योक्स इंगिस पास पेरान तामी वसला भारत ने वेंजवेले लखतुनी फ्योक्स गामी तलुक्स बेंच के होते हैं या युल इंगिस का सरदेलुक्स शेस सरहिया दोने एक हक्तन शमाम साका नमजे गायब चिक नफल लगाडू लिन उत्खन लखचेप्शन लखतुत पुर्तन पुर्चे और थियांग मांग बस दियुनिन मिन दरे सक पेपुर की खबर नाइजिन चेस्दे बस यजू खुदानर सामानी फकरियां

0: तो आधा घंटा हर दिन के बाद, एक दिन छोड़ के एक दिन देना, आधा घंटा वॉक बचा, ब्रिस्क वॉक मतलब जल्दी जल्दी डुलचा बा मितांचा माना कुलिया में डुलचा ब्रिस्क वॉक जैसे ना थी, मतलब तेज डुलचा मतलब इतना चलना चाहिए आपको कि थकने टाइम तक, जिससे आपको हार्ट बीट तेज सचने ना यार, यारी हार्ट बीट को यार पता है हिंग टुंग मतलब पसीना और मत सोख छना, आपने अच्छा एक्सरसाइज बसिन छना आती दो गचुगा टाइमिंग को यार मोतुक बना पीतो का मना आप एक कंसेप्ट है अलग अलग कंसेप्ट, एक कंसेप्ट चुद मोतुक सुबह 7 कह रहा हूँ मोतुक 7 बजे कह रहा हूँ, अगर आपने वॉक किया एक्सरसाइज किया तो वो ज़्यादा फैट बर्निंग में यार सिल को यू चुकी ज़्यादा इफेक्टिव लुक रहे। लेकिन दूसरा कंसेप्ट एक है कि आप दोपहर में करोगे 4 से 6 के बारे में, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा थोड़ा एथलेटिसिज्म मेरा पावर देता है, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में खोपा जान पो दोस्त बस यारी मसल वाला पावर होशिन और मसल एथलेटिक यार मतलब फंक्शनलिटी ज़्यादा रोचिन दे छाना, यारी चॉइस आप सुबह भी कर सकते हो शाम को भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा अगर वेट लॉस करने के लिए करना है तो सुबह करना बेहतर रहेगा, या आपको ज़्यादा फिटनेस के लिए जैसे आपको एथलेटिसिज्म बनना है जैसे जवान बच्चों के लिए उनको दोपहर में अराउंड 4 to 6 ज़्यादा ज़्यादा रोचिन तना वॉक पूछी बच्चा ब्रिस्क वॉकिंग तो मैंने बोला ब्रिस्क वॉकिंग मैंने तेज तेज डुलचा माना बाँ मितांचा माना कुलिया में डुलचा चढ़ाई और उतराई में चलना नहीं है प्लेन पे चलना है, क्योंकि खासकर वहाँ तीन शिमला चढ़ाई उतराई में अगर चलेंगे तो पुक्स में क्या सुनना पुक्समा जर मोचिंग खेमो पुक्स में का लोड छाना का तो पुक्स में जोड़ सागा दो सागा आती जोड़ सा जर मोचना प्लेन ही का डुलचा ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे 15 मिनट्स और अल्टरनेट डे 30 मिनट्स
1: कैसे दोस्तों अता एक्सरसाइजेस कोला जिसे खसर दैन यंबो दिरिंगिर देलुक्सी प्रोग्राम पो थमाथोन अरियामा यो दंता अरदे मसूरी दुक्तो इंशाल्लाह नत में दोस्तना यो मेट बी प्रोग्राम पे यंता ना यंग तुगे देमन पो गचंग सा इजिन चे देबो से यु खुदा नर सहमानी फागले
2: दस्ता सपेंटिस प्रोग्राम यो पिन देलुक्सी हगो मीडियो में क्या नज़र आकाशवाणी करगिल के नज़रिनुत वक्त बुद्धिसो तगाना मिनट सुमजुना गासंसु कसता प्रोग्राम यन मज़ेद शेरबा ने चुगुनी फिया प्रोग्राम फिर चुख खत्म खतीजा बानो प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन।

इतनी जबाना गतांग मतलब गति मना आइडेंटिटी ही वो चुराता है फिर गति मिंग का कसम कसमी लस्कुन बे दैट्स ऑल अ फेक वेबसाइट बनाता है सो ऑन जैसे कि दैन उप गति डाटा वाटा सता से ना कौन इस मना चिप इतनी जबाना गति आइडेंटिटी चुराई करके फिर उसमें वो लोग कुछ भी करता है सो ऑन। और ये चीज़ सुन दोमेन में ऑनलाइन शॉपिंग का तो हमने जिक्र कर लिया सो ऑन कि ऑनलाइन शॉपिंग कसम कसमी साइट जो से ना पहला गाता पेने ता हूँ जिससे ना सामान पो गाता मिले अच्छा उदी चीज सुन गाँव खोज चिप इतनी जमा दो मिनट मतलब फॉर एग्जाम्पल आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट करके हाँ ए वेब कहते हुआ दिया नु ड्यू पाना दिसर लप पेने थोप चीन फलानी गेम फोर्स है ना दिसर लप पेने थोप चीन जिन गता चिप इतनी फ्रॉड बेन सो दी इन्वेस्ट पाना हाँ दिन यानु इन्वेस्ट पाना गता ची हसीन पैसा हमें दुगना मिलता है दिसर लाता लालिश वालिश था उसने चिप इतनी जमाना खोज गाती कहना मतलब उजला लालिश था उसे पहला पेने लिप्स का ऊंचा चाहते हैं ना पद पेने मायो मियो चा उजला या तो उजला स्कैम का चिक दिया तो उन की गाँव नु पहला पहला है ना जब आप स्टार्टिंग पे होता है तो यही कहना पेने खेरचिन पेने इतना ना खोज फिर 100 रुपये तक ना खोज 200 रुपये यूँ चिक तो शिवा चिन फिर निसुम चिक फिर उसके बाद जब आता आता पता तो हाँ भाई जो सही इन देखें जो शिवा सिंह आते रो पेने के दिन ज्यादा फंसा ही बना पद खुरे ना शोरचा और जर ला दा दिंग स्कैम्स होता लोन वोन फिर आता हाँ फलान ना लोन दो फिर लिंक विंक करते होता लोन तान दो ये तान दो होता और जर ला लोन तान दो जरिए यही कहना बैंक अकाउंट की डिटेल्स का मा खिर्चा इन का मा खिर्चा देखा ना लोन पर माता मा पद यही अकाउंट पे ना पेने फीस खिर्चा और इस चीज़ सुन गाँव आते दिन आता थो मचे देंगे ती रोजमर्रा जिंदगी अनुक दी चीज़ कुन थो मत हाँ छाना देखा ना थाना दी चीज़ कुन गाँव सुन आता ऑनलाइन स्कैम सुन सो दिजा दिजा तरीके का दिजा स्कैम सुन छात्र देखन पो आता पता ओदे चीज कुनी कना गातेस गाता अवॉइड ची बसे बचिन ओदे चीज सुन मीवा चा ज्ञान मी हिसाब पो ओदे चीज कुनी कना ची बसे गाता थारिंग्स लुक्सिन नी ज्ञान मी हिसाब पो गाते ची बचा नी जबना जब बे गाता ओजल्ला मना अननोन कोई लिंग आता है कोई कुछ भी आता है सो आता यमुना कसम कसम एप्लीकेशन सब गाते डाउनलोड मी बचा अटैचमेंट उसके साथ कुछ भी होता है तो ओदे चीज कुनियन मी हिसाब पो गाते ओदोनी कना नान मी नान चा ओदोनी कदुन दसो मुन ला मोबाइल में फुल चा हर चीज पे मतलब नन इन मिशा चा ज्ञान मी हिसाब पो ओदे चीज कुन कहते ध्यान जा सा दो मिनट में ज्ञान मी हिसाब पो रंग आप मोबाइल कुन यानो सिक्योरिटी और डेमो जा चा सो आप लैपटॉप चलाता है तो वायर एंटी वायरस अच्छे से डाल के मतलब ओदे चीज सुन ज्ञान मी हिसाब पो ची बचा कहते गति हिसाब का गति चीज कुन इस ना जा चा सो दो मिनट में जहाँ पे भी अगर आपको कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहा तंग मर कोशा उतना सबसे पहले उस चीज़ को वेरीफाई करना है सो गति पर्सनल इन्फॉर्मेशन तंग मा वैसे पहला उदे साइट के बारे में ठीक वैसे छानबीन बचा हाँ भाई ड्यू जेन्युइन साइट चिक इन स्वा ये कोई हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज तो नहीं करेगा देखें सोशिक वैसे गति सिंह में सब को उदे चीज़ सुन गति कहना बचा सो कोई माचब हाथ से छा बजे पहला छा बजे पहला गातंग चिरुपचा सतर्क टुपचा ना तंग पहला ना अखुल दोना डाउनिंग हर चीज़ में होता है इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो गाँव में अनुक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैन सिक गाता चौं बंदी जमाना एक सिक्योरिटी के लिए वो दिया होता है तो वो सब गाते ज्ञान में हिसाब को कौन जक्षा सो और गति नाम साइन ना जैसे कि क्रेडिट रिपोर्ट हमारा होता है उनको हमेशा मॉनिटर करते रहना है मतलब स्टेन दुख चाह ची छेन दुख ची मिन दुख पासवर्ड यूनियन में हिसाब पोका ची से ना ची जगना स्ट्रॉन्ग लग चा दत सो मामून ला सिंपल पासवर्ड में जग चा कोई भी आके हैक करके स्कैम करके गति के ना यन में हिसाब पो गति के ना जग चा दो मिन मताना दे ची सुन गाँव आते ची सोनी जबाना ओदे ची सुनी गाता मतलब ओदे ची सुनी गाना गाता थारिन सुपी ची सोनी जबाना दिन मेल दो मिन में अगर गलती से हमसे लग जाता है तो गलती से मतलब उधर चीज़ पूछाना उन चीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट करने के लिए भी हाँ भाई सुन गलती से कोई चीज़ मीन्स इंफॉर्मेशन चला गया कहीं पे कुछ हो गया तो गाँव अच्छी उतनी से बना गवर्नमेंट इस गाँव साइड से मतलब उधर नहीं कहना अच्छी बचानी से बना उधर फिलहाल रिपोर्ट बचा हाँ भाई मेरे साथ ऐसा स्कैम हो गया गाँ नीचे बात करे जैसे कि एक तो रिपोर्ट फ्रॉड डॉट एफ टी सी डॉट गवर्नमेंट इन जैन चिक एक साइड है उस पे हम कर सकता है दो मिनट में खोनी हेल्पलाइन पे कहते कॉल चोचा दो मिनट में IC3 जेंचिक एक साइड है उस पे हम मतलब ऑनलाइन एक है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर नाम की IC3 उस पे भी हम जाके कंप्लेन कर सकता है अपना मतलब गाती चीज सुन इतना अच्छा और ये चीज सुन दो मिनट में गाती लोकल लॉ अगर पुलिस के पास भी जा सकता है

0: साइबर क्राइम के पास भी आता छा यन चा उदे चीज को निकन यन मी हिसाब पो उदे स्कैम सुन के ना आते यन मी हिसाब पो दूर दुख चा दान दिन जमाना डिजिटल छाना छाना को इस फायदा ना यम बो को के ना आता अच्छी से नुकसान आयो छाना यन मी हिसाब पो रंग सतरक दुख चा रंग खोश यन दुख चा उदे चीज सुन के ना रंग बचाई बच जा यजु खुदा ना फकरे
1: Kasata daksa sa po yantes trusir gas na bin juksu pin. Tiyang majagay di trusir ni kana yantes fan kili ni tuktuk. Trusir gam na yanta sa po samastot kailip chugit. Haji Hassan Irfan iska tiyang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी. परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट

0: रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
2: ATF price stabilization fund mein
3: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
2: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
1: ATF price stabilization support will be enforced for a period of 36 months. International ATF prices have increased 2.5 times from 60.5 rupees per litre in March to 142 rupees per litre in May this year due to the crisis in West Asia. The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in the Delhi NCR area with a financial outlay of 9,585 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha, spanning a total length of over 163 kilometers. He said the total cost of the project will be over 8,300 crore rupees. In Karnataka, senior Congress leader D.K. Shivakumar was sworn in as the 25th Chief Minister of the state today. Governor Thawar Chand Gehlot administered the oath of office. Dr. G. Parmeshwar, who held the home portfolio in the Siddaramaiah cabinet, was sworn in as Deputy Chief Minister. 12 legislators also took oath as cabinet ministers. Several senior Congress leaders, including Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge, Chief Ministers of Telangana, Kerala and Himachal Pradesh, attended the ceremony. Prime Minister Narendra Modi has congratulated D.K. Shivakumar on taking oath as Chief

0: ya den nga re sang yambo khon chinga los pin jinga baksa section 6 e te ga minor cheez ka to dukandar cheez ka to sunje phu sa ka to se tambaku thong ma thong na odi ka chu ben so ma so section ni so de then section 6 b te hed section 6 b te hed mana karila kafi mana nas du matlab appeal ho de dukandar sa section 6 b te hed 100 years se jaise ki 92 meter hai अंदर ची दुकान चो ना ओदुस माने बिल्कुल सिगरेट प्रोडक्ट जप यन छे मिलता बकुई प्रोडक्ट बिल्कुल चाहे कोस खानी हो गुटका हो पान हो ची तंबाकू दर न कोस माने जप यन छे मिल कोस पैकेट आ जप यन छे मिल चांग जप यन छे मिल गा इंस्टीट्यूशन चो ना चाहे मा अति रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो मक्तब या मदरसा हो या चाहे अति स्कूल सको ओदे 92 मीटर अंडर माने सिगरेट बिल्कुल जप यन छे मिल ओदुनिका ngachas janan tamat ko yemana cigarette cham chur na gatunga chas ek do bar po tin char bar sikho azabat ki hintes gar na khos pinna dena war zox tong zero ma pehla war ning tang sumat bar bar khos violation bana gatunga chas odun sa seize base khulo ma thik ga last one in section 7 section 7 ite he dio jabana section 7 ni matlab pin ngates de cigarette de cigarette ke hamesha chho so chin so yas bi se ho chin ये सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ सरे या मैं नका तो दिखन चिकाचिया में सिल्वर यू मामे तो पता मचे पता मचे ना सीधा ओदे के लंग्स पुचो सोच में अति खलमान जो से ओदे के माने पूरा नखपो सोच से चो सोच ओदे पैकेट पिक ओदे में तो ओदे दे ना वार्निंग पे में तो बिल्कुल सो में चे में देन अति करगी लूज सिगरेट सोत लूज पे डबे ना फिंग्स तमन ओदे के वार्निंग पे में यो था दोना सिगरेट खाची दो सोच सोच बाहर सिगरेट चाइनीज सिगरेट जरे बाहर ना ओदे के माने वार्निंग यो में ते वार्निंग माओ माने चीज हचिन जबना ओदुन माना चोंग मा सेक्शन 7 दिते हे ओदे के फाइन पो माना ज्यादा छाना का तो ओदुन बिल्कुल देंग आती नतेस तीली मा चोंग माना काफी फुसाई का कंट्रोल छन ना या सब खाना ललोस पिन पे क्योंकि देंग आती स्टूडेंट चिला से 100 रुपए ने ऊंचे में 150 ऊंचे में सीधा पैकेट खमा खोला 10 रुपए ऊंचे फस पहला तीली खों से सब चीज 100 रुपए खरा में बनो फस माना खोंचे में ने छाना का तो दे माना जीव माना बिल्कुल गा दुकानदार चीन ना सिगरेट तो माना तंबाकू चो माना बिल्कुल खुला सिगरेट या लूज सिगरेट चो माना बिल्कुल सेक्शन 7 नीते चीन माना इन सोरा ध्यान सा को मध्य सेक्शन नो मत कोर्ट पा एक्ट के अंडर ओदे थ्रू मैचेस मार्केट चेकिंग बसे सुस देने बाना का तो ओदे निका फाइन मैचेस इंपोज बात है
1: कसा जो छाने रेस मा सल्फो बस मॉल्स तनाता यंस पर जी आंदो टिप पे जो की दसंगते दसेरे समोल्स की सिक्रेट पैकेट पिका देखा नति लंग सुनचो से तुम बस कोई दे गस्तान उम्मीद की दु जो हिंदी का इफेक्ट छजें दे रहा जो छाना दो मिन मंगाता असल खाने पर बस बीस पन्ना तो पता कि दी तब्बा कुछ नदी की चीज जरर छ हो जें दे छस पो फिर भी नति मीमांस पने दुन इस्तेमाल बे था जो छना फिर भी नता दी प्रोग्राम में स्टोरी का एरेस नति मीमांस पन्ना ngati ga odet tabaku ni athar puga chor chachin yaga chuga chor zermo ka tu chin du ni skol le sasi mo chuk ka
0: tabaku ya sar pa mana ngates di ka mithung spi ga na tang sang athin nang se organ mana sa ga chachin na chacha so ma so pehla chi shat pen chuk na daksa di modern daksa se dor pe na mana zyada asar ben pe pehla chi shat chuk na ngati matlab hygienic zan mana pehla shut le mana odun sang sa se asar pe len mat chuk ka daksa ngati del chi sabzi le be chi le be dun sang ngriang mana मिलावट बसे या दून केमिकल्स ना से सुनमान सखा जल्दी जल्दी खों ज्यादा छा चुक से या दून जल्दी स्मीन चुक से खों छा नहीं इतना असर छा मिनट सबसे पहला आता दक्षा जवान होने आता हूँ केस दुख जेंट के हम लोग जेंट के ने हम लोग ज्यादातर मन आती चलो आती मैंने बाहर ने फिजिकल ने फीड होंगे लेकिन नंगो चाहना मैंने सिगरेट दे तम्बाकू ज्यादा तो मना सबसे पहला आती हार्ट अटैक को ज्यादा होने आती स्मीन देन चाहते हार्ट अटैक होंगे ना वो तो हार्ट अटैक मेन रीजन छचिन आती तंबाकू का दूसरा अति रीजन चिक चिक छचिन ता स्ट्रोक होने दिमाग का नुकसान छते अचानक दूर लमा ने चंगा में चोक से स्ट्रोक हम स्ट्रोक छचिन या पैरालाइज सो सॉल्यूशन ना शीचा में ना देना में छचा में मचाना आता कोमे नुकसान से सॉल्यूशन दो स्ट्रोक स्ट्रोक छना दिस स्ट्रोक पुजर हार्ट अटैक पुजर दोन सब दोन मेन कारण जिसका मन ज्यादा से ज्यादा आता दो छेन पे जवान है हम लोग छेन दोनों चीज करने से तंबाकू करना दो मिन मंगाती जर गाती यंग कॉर्निक डिजीज यंग छो छो डिजीज सुन मैक्सिमम डिजीज सक मना गाता ता मौकी कना यों चिन पे ता मौकी का गाती लंग जर गाती मना जैसे कि गाता मना लंग कैंसर जर अच्छा गाती स्ट्रोक जर दुन सक ता मौकी के नों चिन पे दुन छो छो देना सों सों ने देखना सेकंड गाती ची ची बस लोक्शन जब ना जैसे कि गाती इन्फ्लुएंसर हूं ना जैसे कि गाती फ्लो सबसे ज्यादा दे इंस्टाग्राम फलान फिस्तान फैन वैन जरे फैन फॉलो जो को दूस मन जैसे कि नहीं शेरो खान जोशी जा कोई फैन चीज का तो सिगरेट ची थोंदे निक चोस ना ओदे कने दक्षा से टीन जैसा इन्फ्लुएंस हो से थोंचिन सो मा सो तीसरा मेन चीज इन सिगरेट पूछा लोक्शन जब ना सिगरेट पुदे कने लोक्शन गाती तमोगे निकोटिन होत निकोटिन होत में दक्षा आते निकोटिन जब ना मैंने जैसे कि चिकिया टेंशन छा ना कुछ समय नुक दे आती सोसाइटी और टेंशन छा ना सिगरेट चित हूँ या फिर सवाल हो सो एग्जाम चित होना सिगरेट चित हूँ ये और दूसरी चीज सोचते जब ना निकोटिन होत निकोटिन इलाज पीने

0: खुशी थप चुक चिन सोन सोन डोपामाइन जेरो देन देन गन ओदो छि छ चुक चिन खुशी छ चुक चिन चोक छि मिया एरा सम चिन किंगा टेंशन फ्री सों खत्म सों। लेकिन ओदे निकोटिन पे मोदे हार्मफुल केमिकल्स मन हजारों ओदे नो हार्मफुल केमिकल्स ओन छिन ओदो कैंसर इंगा ता मेन रीजन ओ चुन देन मना जैसे किंगा ति मना लेट्रिन यूज बे डीटीसी देन सम यो मता चुक ना देस हरपिक ता ओदो चोक स्टाइबोन ngati mana business at bidena cho so odun yang chi chi chemical odun sa cigarette yang ong chin chan odun ngati cancer omi zarien lekin de nicotine pe chi chachu chin jono pa adat chachu chin ta mazig ong se la thenji thong sa ha mazig ong se bana khojang de mazat chal chin mazat chal bana khojang thong chin ha ngate zaga ka to cigarette is ya tambaku ka to tension jet pat na ka to denga thong janga tension chi so denga cigarette mana nisum chi thong ये दे थू ना का तो कम से कम ना माने 5-10 दिन ना माने टेंशन ले जाते फ्री जूस पर उसका बोलू से ना लुशा में खुशी बचिन 1 घंटे की अपना खो जाम खुशी बचिन यार थूचिन दे थूचिन हमें
1: बिल्कुल
0: ये तो टेंशन जेती ना कि मर्जत पेन सिगरेटिस मर्जत पेन दे निकुआ चीज है जिन निकोटिन पुस बस खुआ एडिक्ट छ चुकिन छिन इसके बाद खोज 2 थूचिन देगा ना खोज 3 थूचिन देगा ना 5 थूचिन देगा ना वो एडिक्शन पुखा जे चुपा देगा ना खोज देने मुब्तला सोसन एडिक्शन छ नशा छ को मुब्तला सोसन देगा ना खोज बड़ी बेन छ छिन छने का तो मन सिगरेट इज देन टेंशन छ ना ते 2 थूचिन ओदन सब मी 3 दोन सब 3 जोने द लास्ट ईयर इज द लो कि मते दु मस्जिद खनिज दु बे जोना हां करगिल केस खची को नो दिया ना छ दिया नो मत सिगरेट पर जैसे कि कौन जिनो तुत्पा ना मना सिगरेट पुथु मना मजलिस सगा होटल सगा नगा ता मना ठुप सोंसे मना देनी छनांगा सिगरेट पुर जचुपा सुइदा तांस पिन जनो सुइदा जचुपा खानी तांस पिन जनो ओदु सोस के जोंने दे छन का तो दे ना दुन गति करगिला चिचि दु आम केस पुजेनो किंगा जस मना सुइजर मोठी छचुपा खानी तांस पिन जनो गति दियानो पेशेंट चोंस खोज देन चिकना सुइजर म ठीक छचुपा खानी तांस पिन जन जिस छचा सुइजर में गया सुइजर में फिर सुइ डॉक्टर के छर को सुइ डॉक्टर लगाइला जोंचिन दे निखोज खानी तांस ने चीज समझ निखोज पहला खानी तांस 4-5-6 महीने खाली दाम खे दी का छोगाम रिक कर छोगाम ने बुत पसो छेन सों लो खानी खोज ची फेता सुए जे मे दाम याद ना खे दी खानी दी ना नुची सों से चलो खार को कर को छोगाम जी तो से सों सों सों ले ना खोज से ने ला ता सों सों से ने ला ता से दी लो सों से सो ला लो सों से ता ना का तो खे दी मा ना देन छेन सों ले मा ना फ्लेशन स्क्रांस मा ना पो छेन मा ना खराब छ छ छेन सों सों ना ती मिगिन ले ना 3 महीने याद ना खोज जे मा ना खोने मो दुखने पेशेंट पुज जत खोने मो दुखने खो देर पिलो खो जर गेप ना ती माने सिगरेट के चोसे में मत जुक ची खाओ माने दिया सोस खोना सों लो छाने पाची ओस पिन जदा मोट कैंसर सों में सुए जर मोर जे चुपा दे सुइदा तंस पे खो ची खों सुए जर मोस खो से जर मोस या खो माने सोरुम दुख दुख पुते फांस मो गेप ना पाची सों मोट कैंसर ओस देन खो जिन जिन ना क्विक ना एवरेज सों से सिगरेट पा मोस इन जत सुइदा क्योंकि ngara ngari mi gis thong sin de chi छाना ओदु तो देल देनन माना ठीक में दे फिल अचियो जबना यंतन सिद्ध हो जाए टबको डिस्ट्रिक्ट टबको कंट्रोल सेल कर ही लाऊ जा दी ओल्ड हॉस्पिटल इको दिया नो टिकट 5 रुपए टिकट चिलन चा देगा डॉक्टर के छ डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट बजे बा डॉक्टर रे अपना दिया हो जिन दिया हो से जी बचिन काउंसलिंग बचिन देगा ना खार जे चुपे ना मी सब दिया चा सन रिजेक्ट मर जे पना सन दे रिजेक्ट चुपे मी ना कांचस खवा छी तांचिन गम्स पुतांचिन सो सो मैक्सिमम पोस्ट करेस दुकाने के ना गम्स काउंसिल दा तें दुसे थुना मो सना सिंग का पेल पेल छछ ओदु तो यूज बा तो यूज बेतरा का पता बिनो गांस पे आची और निकोटिन नता नशा उस छ जुस पे निकोटिन इज ओदा निकोटिन सबसे जक पना बाके हार्मफुल केमिकल सो भी मनकवा कुलिया कुलिया कुलिया कुलिया चिंगा मिके नते सो दे गांस पीका कुलिया फपचिन खचे गम से कम अचानक निकोटिन पेज जिन जो अलग अलग एम जी ओदो गते 24 घंटे दो बॉडी के बेरा ओदो सं कंट्रोल छचिन छान का तो नचा ओदे सपोर्ट इन का रन अस देने मी बचा कि ड्यूज दे चुपा सुविधा ता फलन ता दिया हो सकता छ ड्यूज दे चुपा अलग मन जा सो दे ओदो चोगा नचा मदद बसे छ बचा और नचा लगा दे जैसे कि दे मनस 1700-1800 पेशेंट चिदान सफाई सी उसमें से मना अच्छी जर मना 200 पेशेंट सफा मना बिल्कुल मना क्लियर हो अच्छा सपोर्ट बस बिल्कुल फांस उसमें से 200 पेशेंट हो जो 4 डब्बा सिगरेट या मुखामा सों से चिलिम थो ले चुक खान दिन मना दिन सर पोगा ती येलो कलर सो सों सोच खोल दिया यों से जिन चिंगान अर्जित चमेन ना बिल्कुल जित चमेन ना अर्जित चमेन ना देखो मना फोन इज मना जबरदस्ती दिए क्यों सी यों से पहला खो मजा आ गया अपना खोज 3 महीना मना अच्छी दिखा 3 महीना अलग कोर्स हो 3 महीना इलाज बस दख सब खोज मना नाम सो मजे दंगा फोन बोस गाटिस नी हालत पे चोक्षी एन मिदुक तुझे रखोज मना खुरा देना बस ये छाने दो मिर्जियत भी मना सवाल ये पे लेकिन दो तो आया ए बार लस्वीदा मिता हूँ सिद्धा यूँ चाहे ओड़ हॉस्पिटल है
1: कैसा जो छाने मना सल्पो बस ये रे सिंगता में मास बंदा हगोतां साजू तना जो अंगता सिक्रेट पुजरे या दो मिन मंगता नशीला चीज सुन गामा लड़सोक चीज ना जो गाँव अंगता ना दिन फंचमिन ना आस्के फंचमिन उल्टा अंगती पेने जाया सों संगता नुकसान दांचे इन छाने अंगता गामा जो हागो दुख पर उसे ना जो यंग अंगता गामा चिकदिल सों से तबाको सेंसेशन सेंटर नहीं बोला खुद बसे अंगते संगती

0: बस भी सुन ला या मति खर खर ने लुगा सुजी की सिगरेट या तू चोल नशीला चीज का तो इस्तेमाल बांधना मत अंगा मल उससे दो निश्चित ना मत संगति खर खर उन साब बे या पाक बे मत फ्रलुक्स बार बुशाई ना जो छन सदा सब मत अर्थ हम तो जो की मति दिलिंग सी प्रोग्राम पर लेगी ना मता खासन प्रोग्राम से सोसे जो मता मति दी प्रोग्राम पिकना मति मीमांस पने सागो लेंचा इन यंग यंग मत नमजेनो खेस गा सुची का नशा सोसे ना कु ngata DTCC center ka ngata di ke se all hospital ka ri dikon se mati doctor la TC phones guideline me fraluk ba change yanga suchi ga di program nge ne hago ka tu chana ka tu khos ngati khar khoro ne no mati ek bas bis kon lang hago ta change ju dena ne imbo ngata aspira lekin ki me lusha tu paju lekin ngata tu spus chang ijazat chita menduk sajak sahib era yang akashwani kargili pure team me chosa o jusre mo de ju eli linjan khas kon ngata ar de amma ju ngata ngati probas bis kon es nye ne duni ka amal bachain chana yang sarchi kara o jusre mo de ya ne imbo dirin si program bu thamaton khuda nar samai mon ran lagaton yong me pi nam jang yang program chi pre ta ne imbo khatuk chok de asuk panga sahib kazim hasani ijazat chal de bos ya ju khuda nar chahmoni pakhne
1: मीडियम के मजे आकाशवाणी करगिल के नजेनो तो अस्पताल से तुरदुन सों सु का सता प्रोग्राम ने मजेत अच्छे नमूने फिया प्रोग्राम फ्र चुकन पे इन जहरा बानो मीर प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन

0: pathologist language shanga ze ju ki ngata ngacha ek plants mein jab disease lag jate hain to ek ye preventive hota hai ki disease lagne se pehle ngates deka kuch contact insecticide ya aisa kuch karke hame usko disease lagne se pehle lagne nahi dena hai prevent karna hai chhana jo hum diet ke baat kar rahe hain ye matlab cure to kare ya kar sakte ya nahi ye ek acha doctor hi bolenge main itna hi bolungi ki ji diet ngates ngati diet ne wo include banari ngatanga ji zermon na stool se lushin inshallah chhana ye nahi ki ngate ji diet process bin hum jaise ki ngas daksa ya raz ki ngati fe anuk do sik do probiotics ki ki wo cancer ko bhi rok sakta hai to phir se dukh to aisa nahi ki aapko apne doctor se कंसल्ट करना है छाना तो सोचियो जी और एक नाता जो नाती सेलिनियम जेंची मिनरल चोंची जो फैनु बारले में और दोस नाता नाती मोस्टली हाई एल्टीट्यूड पर बोमोनी अनुक जो रिपोर्ट हो जो थायराइड की बीमारी छोरा यो चिन नाती आछिन मोल्ला थायराइड टी जी जन्मो छाने जी सेलिनियम पुस बस से देखा ना नाता स्ट्रोंग रूप बस जा चिन जो उसके बाद भी दानु नाता कॉपर जिंक आयरन सब छह मकदार अनु नाता जी फैनु यों चिन छाना नाता जी मतलब जाय इंडिया माय फूड इज माय मेडिसिन जरे की गाता जी फोटोन गाव गाता मानी तो छेत गाता गाती टोंग टांग से मानी तो लंग फानेट और उसका टेस्ट भी दाने जो गाता हा छाना यार दांगा तीस की यूल लबी में फोटोन ही चाम से गाता गा फान के और जरे जहां तक एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने की गा पता की गाती जी अनुक बी में फोटोन ला एक से बढ़कर एक मेडिसिनल वैल्यू है जो उसमें से सख्स बस ग्यालबा ngati yula ni gyot khante chuli su khante chuli su
1: su hajo
0: khante chuli se anu vitamin B17 je vitamin chon chin jisko amygdalin ne angzer chin jo amygdalin aap log agar search karoge ya doctor latin erik ye bahut decades se cancer ke liye use kar raha hai एमेगडेलिन जरखने कंपाउंड पो जिसको विटामिन B17 भी से भी नाम से भी जाना जाते छान अंगति चुली याक पे अनु खास कर खंटे चुली याक पे अनु उसकी दे कंटेंट पो मांगमो यो विटामिन B17 ने छाना वर्ल्ड में जो कैंसर के पेशेंट उसको यूज कर रहे हैं यू अंगति डाइट अनु मांगमो एड बेंच जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं खंटर सुई याक पान यंतस गते देन का कतस्ता नरिक शॉपिंग में ब्रूट जरखान होने अनु इतना उनकी करने लिए डिमांड यौन दो उनका इतना वहाँ से सेल छात की इस चीज के लिए यूज करने के लिए अता जी एमेगडेलिन जरखान पोनम्बो यंग जी हाइड्रोजन साइनर्ड जिन जी पॉइजनस सब्सटेंस जो यौन चिंजो अता ओदो स्नोट खा यौन चिंदो का तो मामो छाना वो लिथल भी है अता तक्सा खास कर नी कंसान यो गारी सायद खानी अच्छी नमोन का फोन होने बो तो खोलना पता यो कि अते से पचास हो से तास बो से बालंग शीर्षरे छाना हाँ इसमें
1: दो ता छोरबा पर जो कि अती का मत्सेगा स्टिंटा वे सोनमा ला स्टिंटा ना पाचे छुटोंग जेन
0: पाचे बिल्कुल जो कुछ इंसेक्ट्स है जैसे कि गाती चोंग तब खाने स्टिंट पो वो पाचे से बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं हम फॉर्मल रिक्वायरमेंट बात कि पाचे से ऑर्गेनिकल भी हो जाते हैं पॉइजनस सब्सटेंस हाइड्रोजन साइनेट लेकिन इसमें साइंस है अब उसमें भी अभी कॉन्फ्लिक्ट है डिस्कशन चल रहा है साइंटिस्ट की कि उसमें वही कुछ प्रोसेस होते हैं उससे उसका ये खत्म हो जाता है जो पॉइजन हो एमेगडेलिन की कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस चले जाते तो उसका लहर खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी गाताची बारगोशीन कम मकदार अनुकतुलन नरिक उसका वो असर नहीं होगा जो छाना ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट बेदनास अमान ला की रूनि डाइट अनुक यंतेस खंते सु खंते सु नल्ला सुमसुम देखा नज बीच भी देखा ना गागा आप रोज जहाँ अपन ला जख्मियों को बचा सम जान जिंदो क्योंकि ये मैं खुद कर रहे हूँ या छान दे अनुक चीज जिंदो डाइट इस तरह तांदे जो डाइट आपको ये खाना चाहिए आपको ये नहीं खाना चाहिए एक का यूनिक बायोकेमिकल होते हैं हर एक की बॉडी दिन दाओ अलग चीज चीन दक्षिण गता मना गता एक लेमन की तरह हम देखते हैं साइंस में नहीं जाके खची सम जान जाना फ्रमल उस पमिंदुगा खची मना हवा भी लग जाते वो हवा भी खा ले तो जर बयान चमिन मैकी स्ट्रिक्टली आपको ये डाइट खाना चाहिए आपको ये नहीं खाना चाहिए जरे क्योंकि अपने अपने राय बॉडी का ये होता है कि वो कैसे एक्सेप्ट करता है आप उस डाइट पूछो खंटे स्वीस पर आने पिंजो नाल नाल अपशुनी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं खंटे दो खंटे टू बेंड दुख जरे आधे का नहीं चाहते कि अपने अपना बॉडी कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये होता है टेस्ट कैसे बनते हैं साल चीजों से नगा नगा रिपशुन ला खंटे स्वीस तां से नी बोमो मन किन दुख पर खंटे स्वीस क्यों खंटे स्वीस थोंग ना मन दुख से जग पर वोशिंग को न्योक्सों से टेस्ट तो उसको मंगमो से देने अनुक खंटे स्वीस क्यों से ना

0: घर में हम ब्लॉक करके रखते भुसावा धरा टेस्ट मल दन मत खो तंग खो धरा और दो अपने अपने बॉडी की या टेस्ट के हिसाब से डाइट पोंगाते एक्सेप्ट बचिन
1: बख्शिश जो छा नारी दिस पर खंटे चूली तना खो खंटे चूली की उत्पादन चिखो खचीज न पटक न चाहते फांगत खचीज न खातो चाहते या पेवान चितंग से हलमन जी चुत पाजरे चुत हाजो छा नारी दी के नाता

0: सब्जियों के।
1: गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: क्योंकि इसी से आने वाले जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उसकी तामीर रखी जाती है, और हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो उसकी फाउंडेशन यही रखी जाएगी।
1: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी है कि वो विकसित भारत जीराम जी पर इस साल 1 जुलाई से निफाज से पहले इसके लिए तमाम तैयारियां पेशगी मुकम्मल करें। श्रीनगर में महकमे देही तरक्की और मुतल्लिका जिला अफसरों की एक आला सतह की मीटिंग के दौरान उन्होंने एमजी नरेगा से नौ मुतारिफ करदा विकसित भारत जीराम जी में आसान मुंतकीली के बारे में मुख्तलिफ उमूर का तफसीली जायजा लिया। दिल्ली के मालविया नगर में आज सुबह आग की एक भयानक वारदात में 21 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। जनूबी दिल्ली के डीसीपी आनंद मित्तल ने कहा कि 8 फायर टेंडरों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस, फायर सर्विसेज अहलकारों और इमरजेंसी में काम आने वाले दीगर मुतलकीन की अंथक मशक्कत से न सिर्फ आग पर काबू पा लिया गया बल्कि 40 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर जबरदस्त रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आजम ने कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहकीन में 2 लाख रुपए की एक्सरेशा इमदाद का ऐलान किया है। श्रीनगर में आज कई अफराद ने जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के सदर जीएम शाही ने शमूलियत करने वालों का इस्तकबाल किया। नामा निगारों से बात करते हुए मौसूफ ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा अवामी सरकार के कामकाज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा,
2: ये सरकार कोई काम इनसे नहीं हो रहा, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ, लोगों की जो उम्मीदें थी वो लोगों से बहुत दूर हो गई। इन्होंने बिजली मीटर लगाने में काम किया, रोड्स की इतनी हालात खराब है, टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स पे पहला हमने देखा, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इससे बहुत अच्छी थी।
1: इसी दौरान शाहीन ने दिल्ली में आग की वारदात में हुए जानी नुकसान पर शदीद रंजोगम का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा एनसी सरकार जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए पूरी संजीदगी, खलूस और अजम के साथ काम कर रही है। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों और अहदेदारों को आइंदा पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल और हकूक की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ सैयद दरख्शां अंद्राबी ने आज चरार शरीफ का दौरा करके वहां तामीर तरक्की के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के इन प्रोजेक्टों के बारे में आम लोगों के साथ साथ मुतल्लिका इंजीनियरों के साथ बातचीत की। प्रदेश बीजेपी सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के हमरा कश्मीर वादी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत तरबेती वर्कशॉपों में हिस्सा लिया। इस तरह के प्रोग्राम बड़गाम, पुलवामा और अवंतीपुरा के इलाकों में मनाकित हुए। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अरुण प्रभात ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में महकमे खजाना की जानिब से जारी करदा उस हुक्मनामे पर सख्त बरहमी का इजहार किया है जिसकी रूह से सरकारी महकमों में नई असामियां वजूद में लाने पर रोक लगा दी गई है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को नशा की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मनशात मुखालिफ सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद के अलावा ड्रग स्मगलरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कार्रवाइयां भी चल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं। अभियान की शुरूआत के मौके पर उन्होंने मनशात के खिलाफ अपने एक वाज़ह पैगाम में कहा,
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: समाजी सतह पर मनशात के खिलाफ दरकार इकदाम के बारे में वादी के गुलकार एजाज अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: नौजवानों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अपने फ्यूचर, अपने घर बार को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले की इज्जत की लाज रखना चाहते हो तो कम से कम इस लानत से दूर रहो, क्योंकि ये जो बला है आदमी को लगता है कि मैं ड्रग पी रहा हूं या खा रहा हूं, मगर दरअसल ये ड्रग उस आदमी को ही खा रहा है। इसको लगता है कि मैंने एक दाम किया, मैं परी हूं, मैं जनरल हूं, मगर ये सब धोखा है। जवानी भी खत्म, पैसा भी खत्म और सबसे बड़ा है कि घर बार खत्म हो जाता है। इसलिए कि ये एक ऐसी बला है कि इससे जितना भी चाहे बच्चों को दूर रहना चाहिए।
1: पुलिस की तरफ से भी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां और कार्रवाइयां जारी हैं। अनंतनाग में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 60 लाख रुपए मालियत का

0: मकान अटैच कर दिया। ये मकान आंची डोरा के आसिफ हुसैन खान नामी एक बदनाम जमाना स्मगलर का बताया गया है। इसी दौरान अनंतनाग, शुपया, पुलवामा, अवंतीपुरा और सोपोर के कई इलाकों में खशखाश और भंग की काश तबाह की गई। पुलवामा पुलिस ने जिले के लासीपुरा इलाके से दो ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हीरोइन जैसी कुछ नशा और अशिया बरामद कर ली है। सीनियर बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज बड़गाम के एक स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनाकिदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने एक सेहतमंद और खुशहाल कौम की तामीर में नौजवानों का रोल उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की सदारत में शहर के राजबाग इलाके में आज ब्लॉक दिवस के तहत अवामी शिकायत के इजाले का एक कैंप मुनाकिद हुआ। इस दौरान मकामी लोगों के मसाइल की समाअत हुई और मुतलका महकमों ने अफसरों को मौके पर ही कुछ मामलों के निपटारे के अहकाम जारी किए गए। मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमें शुरू की गई, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग स्कीम से इस्तेफादा करके तिब्बी निगहदाश्त की मियारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में मारूफ इक्तिसादी माहिर डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: ये जो कैंसर वाली चीज है, इसमें जो एक्सपेंडिचर है, इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड सरकार की तरफ से। इसमें अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी ऐसी इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसीजर, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, बहुत कॉस्टली है। तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है। तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ न्यू स्कीम डिजीज स्पेसिफिक।
0: और अब रेल से मुतालिक खबर। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मुसाफिरों के लिए तेज दर, आसान और साफ शफाफ खिदमत की फराहमी में दो अहम इकदाम किए हैं। श्री माता वैष्णो देवी अस्ताफन में श्रद्धालुओं के रश को देखते हुए रेलवे डिवीजन ने कटरा स्टेशन पर अपनी नौयत की पहली ऑटोमेटिक फूड एंड वाटर वेंडिंग मशीन नस्ब की है, जिसकी बदौलत अब मुसाफिरों को खाने पीने के लिए लंबी कतारों में रहने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंगल ने बताया कि यह मशीन दिन रात काम करेगी। इसी तरह से रेलवे के जम्मू डिवीजन ने ई ऑक्शन के जरिए रेलवे के असासों का स्मार्ट और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया है। इस दौरान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए अपना ऐप भी दस्तियाब रखा है।
2: अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो।
0: रेलवे की जानिब से इस साल 5 जून को मनाए जाने वाले आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से एक माह तवील मुहिम के चलते एक पेड़ माह के नाम पहल के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी का काम अंजाम दिया। इस सिलसिले में मुख्य रेलवे स्टेशनों और रेल कॉलोनियों में आज मेवादार, सायादार और अद्वियात की अहमियत के हामिल दरख्तों के बूटे बोए गए। वादी में आज मारूफ सूफी शायर वाज महमूद का 110वां योम विसाल अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाका शूरगिरी मोहल्ला नवाब बाजार में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वाज महमूद की इल्मी, रूहानी और शायराना खिदमात को याद किया गया। जिला सतह पर स्टार्टअप और कारखानादारी के माहौल को फरोग देने की समत में एक अहम इकदाम के तौर पर स्टार्टअप इंडिया और DPIIT की तरफ से जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा के बाहमी इश्तराक से कुपवाड़ा में 6 जून को तेजस वर्कशॉप का एहतमाम है। कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी जम्मू कश्मीर शिव कुमार गुप्ता ने आज जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के डिप्टी कंट्रोलरों के हमरा जिला ऑफिस कम्पलेक्स अनंतनाग में जेर तामीर लीगल मेट्रोलॉजी लेबॉरेटरी का मुआयना किया। उन्होंने तामीराती एजेंसी को इसकी बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट जनूबी कश्मीर के ताजरों और सनतकारों के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। एम्बुलेंस गाड़ी को तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। वक्त की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किए जाएं, नीज एम्बुलेंस गाड़ियों को हर तरह की जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस किया जाए। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉ नजीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: जरूरी है, एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले, जहां से भी चले, चाहे वो साइन बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी

0: बनाए, जब रोड्स बनते हैं तो उस रोड में एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक वीआईपी मूवमेंट होती है उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह जगह देना चाहिए, कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत ईजी बनाई जाए।
1: महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में चार साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ताल्लुक से कॉलेजों के अलॉटमेंट के पहले राउंड की फहरिस्त जारी की है, जो महकमे के दाखिला पोर्टल jkadmissions.in पर दस्तियाब है। डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर की जानब से जारी एक प्रेस बयान में मुतलका उम्मीदवारों से कहा गया है कि वह ऑनलाइन पोर्टल पर मुकर्रर की गई दाखिला फीस अदा करें। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात महकमे की वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगियों के एंड्राज की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। यह एजाज बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेल, फन सकाफत और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बच्चों को दिया जाता है। खवातीन व अतफाल की तरक्की की वजारत ने बताया है कि किसी भी शहरी की जानब से नामजदगियां सिर्फ कौमी एजाजात पोर्टल के जरिए वसूल की जाएंगी। कौमी पंचायत अवार्ड 2025 की तकरीब आज नई दिल्ली में मुनाकिद हो रही है। इस मौके पर मुल्क भर की 42 नुमाया पंचायतों को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ में एजाजात से नवाजा जाएगा। अवार्ड हासिल करने वाली पंचायतों के सरबराहान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी, इख्तराई इकदामात और नुमाया कामयाबियों का खुलासा पेश करेंगे ताकि दीगर पंचायतें उनके तजुर्बात से इस्तेफादा कर सकें। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:20 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:39 पर होगा। खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा और किश्तवाड़ अजला के सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों और पानी की सप्लाई लाइनों की पूरी बहाली पर दिया जोर। आलमी बाइसिकल डे के मौके पर रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर से साइक्लोथन का इनेकाद। वज़ीर-ए-आला ने खेल कूद को बढ़ावा देने पर की स्पोर्ट्स काउंसिल की सराहना। चीफ सेक्रेटरी ने विकसित भारत जी राम जी स्कीम पर इस साल 1 जुलाई से निफाज से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की दी हिदायत। और दिल्ली के मालविया नगर में आग की भयानक वारदात में 21 अफराद हलाक। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं आबिदा अख्तर। जम्मू कश्मीर में सियासी इतिहाद की कॉल यहाँ की सियासी जमातों के दरमियान बहस का मौजू बनी है। बहुत मुद्दत के बाद इस तरह की मुस्बत सोच सामने आ रही है जिसके दूरस नतीजे सामने आ सकते हैं। इस बात पर सभी सियासी जमातें मुतफिक हैं कि अवामी तरजीहात के मामलात पर यकसुई पैदा की जाए ताकि यूनियन टेरिटरी के अहम मसाइल को हल करके जम्मू कश्मीर को अमन और तामीर और तरक्की की राह पर मजबूती के साथ उस्तवार किया जा सके। सियासी जमातों का इस बात पर भी इतफाक है कि जम्मू कश्मीर अहम चीजों में मजीद ताखीर करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि नामसाइद सूरत हाल की वजह से यहां के लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा है। सियासी जमातों के दरमियान अहम अवामी मामलात और तरजीहात को मुतायन करने के लिए जो मुस्बत पहल की गई है वो बिलाशक सराहनीय कही जा सकती है। लिहाजा सभी सियासी जमातों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस अहम मौके को जाया होने से बचाने के लिए खुद को सिर्फ सियासी प्वाइंट स्कोरिंग तक महदूद न करें। एक दूसरे के साथ खतो किताबत सियासी लीडरों के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की मुस्बत पहल करार दी जा सकती है क्योंकि अवामी मसाइल बहुत संजीदा हैं जिन्हें इंतहाई संजीदगी के साथ हल करने की जरूरत है। सियासी लीडर बतौर अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं और सियासी जमातों को अवामी मैंडेट की कद्र करना उनके फराइज मनसबी में शामिल होता है। माजी में सियासी जमातों के दरमियान इल्जाम का जो तुर्रा इम्तियाज रहा है उसमें तब्दीली बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से अवामी मैंडेट की लाज रखी जा सकती है। यहाँ की सियासी जमातों का अवाम को सियासी तौर पर बाशूर बनाने में किरदार मिसाली रहा है। मौजूदा पहल को इसी तनाजुर में आगे बढ़ाकर जम्मू कश्मीर में एक सेहतमंद सियासी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसमें हर एक की बात सुनी जाए और हर एक का मसला हल किया जा सके। ये सेहतमंद तब्दीली मौजूदा वक्त का गमाज है और इसकी हर सूरत में पजीराई की जानी चाहिए। तबसरा खत्म हुआ। बकेट।

अभी आप वीर ज़ारा फिल्म में आपने अहमद हुसैन और साथियों को सुना। नगमे निगार थे जावेद अख्तर और मौसीकार थे मदन मोहन। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं, दिल ही दिल में फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। महबूब के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को सुना। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था निखिल विनय ने। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं एहसास फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बैनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक दो तिहाई बहुमत के

0: आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतिव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौधा पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौधा के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वे कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
5: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको।
4: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य

0: योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
1: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द न्यूज एट 9.

मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकने

0: हलफ लिया है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई है। पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। मौसमियात के महकमे ने कल केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। और बैडमिंटन में भारत के आयुष शेट्टी चीन के वैंग होंग यांग को हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मरतबा दी जाने वाली बजट इमदाद के तहत 10,000 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद भारतीय एयरलाइन कंपनियों को उनकी घरेलू और बैन अल-अक़वामी परवाजों के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करना है। मगरबी एशिया कशीदगी के सबब ईंधन की कीमत में पैदा होने वाले गैर मामूली अदम इस्तेहकाम के दौरान ये मदद एयरलाइन कंपनियों को ATF की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद की खातिर फराहम की जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये अपने आप में काफी फंड है जो भारतीय तैयारा बरदार कंपनियों को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मरकजी काबीना ने 9,585 करोड़ रुपए की माली अखराजात के साथ दिल्ली NCR इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने की खातिर कौमी राजधानी खित्ते से मुतालिक मंसूबा बंदी बोर्ड की मदद के लिए एक स्कीम को भी मंजूरी दी है।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने उड़ीसा के रामेश्वर से पारादीप तक एक नई साहिली शाहरा की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर से ज्यादा है। मगरबी बंगाल में अहम सियासी वाकये के तहत रीजा ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के लेजिस्लेचर के एक बागी ग्रुप को एक अलहदा कानून साज पार्टी के तौर पर असेंबली के स्पीकर की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद ये तकरीरी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रीता ब्रता, जो CPIM के राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं, वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें तकरीबन 60 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है, जो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों के कानून के तहत जरूरी 2/3 से ज्यादा है। ममता बनर्जी के ग्रुप ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को ओपोजिशन का लीडर नामजद किया था। स्पीकर से मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए रीताब्रता बंदोपाध्याय ने दावा किया है कि बागी लेजिस्लेचर्स ने अब ऐवान में हकीकी और असल ओपोजिशन तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप एक तामीरी ओपोजिशन का किरदार अदा करेगा और जब जरूरत होगी हुकूमत की हिमायत करेगा, लेकिन जिन पॉलिसियों की वो मुखालफत करेगा उन पर साबित कदम रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी बहरान के तहत ये वाकया सामने आया है, जिसे हालिया असेंबली इंतखाबात के बाद अंदरूनी बगावत का सामना है। पार्टी ने इससे पहले अरकान असेंबली रीताब्रता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को मुबैना तौर पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की बिना पर पार्टी से निकाल दिया था। सियासी माहिरीन इस वाकये को जब से वो इक्तदार में आई हैं उस वक्त से ममता बनर्जी की क्यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दे रहे हैं। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिवकुमार को रियासत के 25वें वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। डॉक्टर बी परमेश्वर, जिन्होंने सिद्धरमैया काबीना में दाखिली उमूर के फराइज अंजाम दिए थे, उन्हें नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। 12 कानून साजों ने भी काबीना वुजरा के तौर पर हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने DK शिवकुमार को वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाए जाने पर

0: मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज सुबह मालविया नगर के एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर मुल्की शहरियों समेत 21 अफराद हलाक हो गए, जबकि 40 दीगर को बचा लिया गया। जनूबी दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और जख्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। अभी 26 अफराद जेरे इलाज हैं। 10 पुलिस एहलकारों को भी आग में फंसे हुए अफराद को बचाने की कार्रवाई के दौरान सांस लेने में दुश्वारी के सबब अस्पताल में दाखिल कराया गया। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली पुलिस ने जनूबी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में भयानक आग लगने के वाकये में गैर इरादतन कत्ल के इल्जाम के तहत FIR दर्ज की है। इस सानहे में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वाकये की छानबीन का हुक्म जारी किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि DM, DCP और MCD के डिप्टी कमिश्नर की मुश्तरका कयादत में कल से एक माह के दौरान आग लगने की रोकथाम पर अमल आवरी से मुतालिक मुआयने, ऑडिट्स और अदम तामील की सूरत में सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए होटल्स, गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग सेंटर्स और दीगर मराकज के मुआयने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आग लगने के सानहे में हुए जानी नुकसान पर रंजो अफसोस का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात के नतीजे का ऐलान भी कल ही होगा। शहरी बल्दियाती इदारों के आम और जिमनी इंतखाबात और 3 महलों में हुए पंचायती इंतखाबात पिछले पीर को हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और जवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में एक खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 बरसों में हुकूमत ने वसी इस्लाहात के जरिए भारतीय मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाया है। टैक्स निजाम को सहल बनाया, बैंककारी को मुस्तहकम बनाया और पेंशन निजाम ने इस तबके के माली तहफ्फुज़ को मजीद बेहतर बनाया है। नए टैक्स निजाम के तहत 12 लाख रुपए सालाना की आमदनी वाले अफराद को टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा GST में इस्लाहात के जरिए रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी आई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के तहत करोड़ों अफराद की जिंदगी में नुमाया तब्दीली आई है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किराए पर रहने वाले अफराद को नुमाया राहत मिली है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 हेल्थ कार्ड जारी किए गए, जिससे आम लोगों को हिफ्जाने सेहत के शोबे में तहफ्फुज़ फराहम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम के तहत जन औषधि केंद्रों पर मयारी जेनेरिक दवाएं 50-80% कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बिहार के ब्रह्मदेव ने कहा कि इन केंद्रों पर आम दुकानों के मुकाबले दवाएं निहायत ही किफायती कीमतों पर दस्तयाब हैं।
4: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है। डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आम आदमी को बाख्तियार बनाने के अमल में एक मजबूत अवामिल साबित हुई है। इस स्कीम के तहत अहल मुस्तफिदीन को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए जा चुके हैं। जैसे जैसे आमदनी में इजाफा हो रहा है और मौके वसी हो रहे हैं, भारतीय मुतवस्सित तबका मुल्क की तरक्की, उमंग और खुशहाल मुस्तकबिल में फाल रोल अदा कर रहा है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के वजीर आजम के तौर पर लगातार तीसरी बार ओहदा संभाला।

जाने पर मेटे फ्रेडरिक्सन को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और पायदार मुस्तकबिल के मुश्तरका अज़्म पर मबनी शराकतदारी है। वजीर आजम ने कहा कि वो भारत डेनमार्क ग्रीन कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जनाब फ्रेडरिक्सन के साथ करीबी तौर पर मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। लाओस के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फोम विहाने ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दहरीना सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्ध मत के मुश्तरका विरसे और रामायण से जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा कि सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70वें सालगिरह का जश्न भारत लाओस दोतरफा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेलसी एलियोना रॉड्रिग्स कोम्स भारत के 5 रोजा दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं। उमूर खारजा, इक्तिसादियात और खजाना के वजरा और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ भी उनके हमरा भारत तशरीफ लाया है। दौरे के दौरान मोहतरमा रॉड्रिग्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा तबादले ख्याल करेंगी। इस तबादले ख्याल में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के वसी तर पहलुओं का जायजा और तवानाई के तहफ्फुज, तजारत व सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजीद तआवुन के लिए राह हमवार करना शामिल है। भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबे में अहम कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं जिससे दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी तालमेल की अक्कासी होती है। लंका आईओसी पीएलसी ने सापू गासकांडा पावर स्टेशन के प्लांट ए फॉर 2026-27 के लिए 3,16,000 लीटर लुब्रिकेटिंग ऑयल सप्लाई करने का 392.47 मिलियन श्रीलंकाई रूपये की मालियत का ठेका हासिल किया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम और माहे में बहुत तेज बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के दौरान बहुत तेज बारिश की पेशगोई है। महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन के वैंग होंग यांग को हराकर शानदार वापसी की है। मिक्स डबल्स मुकाबले में भी भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका गाडे की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर एक और जीत दर्ज की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों की मदद के लिए एटीएफ की कीमतों को मुस्तहकम करने की खातिर उसने दिल्ली एनसीआर इलाके में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की खातिर कौमी राजधानी खत्ता मनसूबाबंदी बोर्ड को भी मंजूरी दी है। पार्टी से निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली रीता ब्रता बनर्जी को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली में अपोजिशन का रहनुमा मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के लीडर डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। डॉक्टर जी राम परमेश्वर नायब वजीर आला बने हैं जबकि 12 लेजिस्लेचर ने काबिनी वजरा की हैसियत से हलफ लिया। दिल्ली के मालविया नगर इलाके में आग लगने के एक बड़े हादसे में 21 अफराद की जान चली गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

तसे सपैंतीस आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी दुना उर्दू खबर पिन मीडियम आकाशवाणी करगिल कना जरिनुत वक्स पुतुसो तुर्गुना मिनट सुमचु सोसु कसता प्रोग्राम नियन मजद महफिल प्रोग्राम फ्रचुकन बे इन मोहम्मद हसन अस्करी

0: मिंगब्यूंग ना गोथो शख्सियत उनख्यों से खुंती मिथ्यानुक जिले करगिली अवामी गचुक खदमत बेंच जुक्स यंग दे दोम्बे तुस प्यानुक गरीब गोरबे नक्सबार्दून गचुक अफालते बे फ्रलुक्स बस देश को ला त्रिसरु ग्यते खदमत ला फ्रोच चुगिन चियों सीन ध्यान अजुम से दिनी दी प्रोग्राम प्यानुक नची फेसपर्ड उनफो इन डॉक्टर काचो मोहम्मद हुसैन सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हुसैन साहेब गति खत्ते लद्दाख मोनियत पे शख्सियत चीन यंग खुए फ्यापुस चौक डॉक्टर दन मचिक जिले करगिली अवाम रदम से यंग गारंग मचा अवामी खदमत बे मिंगना जिले सदर हॉस्पिटल करगिल लास्क्योते मिमंग सुनी खदमत बेंच युग से दरे सरकारी ओहदे कना रिटायर सोसेन यंग रिटायर छनंग दरंग सकपा नतपो निस्तलुस बेंच ग्योते इंसुक डॉक्टर काचो मोहम्मद हुसैन जिले करगिल ना गोमा गोल्ड मेडलिस्ट दनमसुंग यंग डॉक्टर साहब नती कौमी छोंगर चीन तमसीर पुदे का जक्सना डॉक्टर काचो मोहम्मद हुसैन खान का नात्रिस्वी गंते खत्म लफ्रो चुगे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: युक्सना या यरंग स्टूडियोस को चौजू सरी मुजरत यरंग डॉक्टर लजुक से जिले करगिली नतपौनी इलाज व मुआलजा बेंच जुक्स दरे सरकारी ओहदे कना रिटायर स्क्योतें या मीमंग सुने खिदमत बेंच जुदुल अंगचस उजु सरी मुजरत छना डॉक्टर साहब सख बजे सल्ला यरंग जिले करगिल उपा इंजु गोल्ड मेडलिस्ट इंजु दुंगति कोमा नति अवामा नारिंजु छना नतंग खते लद्दाख रियुल ग्रांयुल पजु यरंग मोजिन नतंग दी रियुल ग्रांयुल पाल्ला दुचि मोलबजत की गचुक जेरमोरिक नतंगा यों दुचु नति दी इलाका ननु बख्शिस
1: नति करगिल ले रिजन ननु वक्ष यानु टीबी नतपो मन कॉमन युत्सुक मगर ट्यूबरक्लोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम इताद दक्षत जर्मो तकरीबन मत खान सुख शिसो फिर भी यंग शकल में वक्तन फोक्तन दोसुस मरीज ले बजाना जुना ससुब न तुत्पा मत आता ना पे वक्स न फल्ला तंग से मन गुंदे सुखपा ते ससुब न तुत्पे दुख चस्पुस बसे ही से उचाना खोक्षा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दि जर्मो मन दरंग काफी मत इधर लुस दुकों ले और जक बजक इकोनॉमिक स्टेटस पे इम्प्रूव सों से नंग उन किचन उन हाइजीनिक सों से नती एग्रीकल्चर लैंड का दि ससुप तुत्पा उन एक्सपोजर पे कम छे हिसाब का दिजर मो नंग इनशाला कम छिन छिन मगर दिजना चामशिक दिजर मो कॉमन यत पिन दक्षा दे जमशिक में दुगरा जना 1984 अनुक मना ओ अस्पताल इन ओ बिडिया इन ज्यादातर मरीज पो खोक्षा ना ही सी शिकायत जवेर पे अनुरोध बाप्स पे सबसे आराम रिक लुशा रुगुन पे काफी तकलीफ छा
0: चना दी तुत्पना ससुप पुस बसे नतंग दी ही सी चाओ खोक्षान देखने हो चीन सुहाजू ख्या रिक पो तासनानी नमजा डॉक्टर साहब हेरे समोस की नती रुगुन वक्स पे खास कर चु नतंग शिलंग शिंग तुकपना नतंग तुजगा बसना तुत्पा चनी मेड उन मोजर नती मना मिसाल जग सुप चना दी स्ट्रोली का दी दी जर्मोन बिहार चीन सुहाजू
1: बिल्कुल चाहे रुगुन लंग अतंग जनस्कोल से अंदुक से हदी किचन पे अंदुक से चामशिक तुत्पर दुगुन दुकपत दोनों सोसपो ज्बेर पोशर जी गलाज बेत सपोत तंग या ससुब न तुत पिला शिमेन अलमोस्ट यू मत दोस बसे दे ससुब न तुत पाउस बसे दिल्ली तकलीफ पो लिख से आम युद्ध सुख और दरांग काफी दिजती तकलीफ युद्ध खान मरीज अस्पताल ला वक्तन फोक्तन लेबिन दुगत आउटडोर यों से हल्का जरमोर योदना जजासमान भी खुरे चाहेंगे चिंता से अस्पताल दाखिल बसे चार समय देना जुड़े
0: मखशिश सना दी ही से स्ट्रोल पोखरंग हती तुत्पा ससुब ही कना शुरू शाचिन जुहाजू
1: ही से हम लोग ससुब न तुत्पास बसे पैदा छखन जर्मो दो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हैं दुगरा जो ना
0: मशीस
1: ब्रोंकाइटिस मतलब पूरी की क्रॉनिक जब ना मना दे जर्मो मना हमेशा लुशा तब दे एल्टिक पो अस्थमे हम लोग एलर्जी सों से चाहे बाहर ने एलर्जन चियों यंगती गो खुरियां एलर्जन चिक पैदा सों
0: मशीस
1: दो सों से लुए पूरी पो इन्फ्लेम छचुए दे लुए पूरी की पूरी पो गक्षला पतला चुस्ता मन दो यंग कुरिया नॉर्मल छत मगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यंग सुखन चेंज पो यंग चंग रिवर्स
0: क्रॉनिक
1: ब्रोंकाइटिस मतलब चमशिक ससुप पो तुत्पो नुकसान तंग से दोनों तंग से दे देना जो ना देख ने एल्टिक पो यंग ज्यादा हुआ नुकसान मिश्र चुक भी फिर सबसे खुखसा शिक्षा ना जो स्पष्ट मन इन्फेक्शन पर एंटीबायोटिक निष्पाव ससुब न तुत्पा मन दुर्चस्प मजर रही है ना जो ना